ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को हैं, अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य

0: देश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 MHz पर। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का विचार। श्रोताओं, आज का विचार है सोच बड़ी रखें और आलेख एवं वाचक स्वर हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा के।
2: मनुष्य अपने विचारों से संचालित होता है। जैसे विचार उसके अंतःकरण में उभरेंगे बाह्य जगत में, वैसा ही परिवेश उसके समक्ष अपना रचाव करने लगता है। कहा जाता है, चोर को चोर मिलता है और साहूकार को साहूकार। इसीलिए अपने विचारों का निरीक्षण करते रहें। अगर आपके विचार निम्न स्तर के हैं तो आप अधोगति को प्राप्त होते चले जाएंगे। आपका अंतःकरण सिकुड़ जाएगा, मैला हो जाएगा, आप गहन अशांति को प्राप्त होंगे। अगर मनुष्य मन का अनुसंधान किया जाए तो ये पाया जाता है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी शांति चाहता है, परंतु शांति बाजारों में नहीं मिलती। इसकी नींव का पत्थर तो स्वयं आपका विवेक ही धर सकता है। तो फिर हम संकुचित मन और विचारों से खुद के लिए अशांत वातावरण क्यों बनाएं? क्यों नहीं हम अपने शुद्ध और सात्विक विचारों से शांति का विराट सुंदरवन निर्मित करें? आज देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे चारों तरफ दावानल सुलग रहा है, जिसके संपर्क में आकर हम अशांत होते चले जाते हैं और पतन की तरफ और विरोध और शत्रुता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यही वो अवसर है जब हम अपने लिए स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित कर ये सिद्ध कर दिया कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंब।

0: कम। इसीलिए G20 शिखर सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य रखी गई। यही हमारे सनातन भारत की पहचान है। इसलिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा और तभी हमारे परिवार रिश्ते नाते और जीवन में अमृत कलश की स्थापना हो सकेगी। जीवन वैसे भी बहुत जटिल होता है, फिर हम क्यों अधिक जटिलताओं को आमंत्रण देते हैं? क्यों नहीं हम अपने हृदय को प्रेम से परिपूर्ण रखते हैं? अगर असहमतियां हैं तो उनका आपसी संवाद और सरोकारों से हल निकाला जा सकता है। आज घरों में रिश्तों में संपर्कों में वैमनस्य तीव्र गति से आक्रमण कर रहा है। ये कलयुग है, इसलिए बुरे वक्त को और बुरा न बनाया जाए बल्कि उसको अपनी सात्विकता से अच्छा और बेहतर बनाएं। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने अंतःकरण का आयतन विस्तृत रखेंगे, और यही समय की मांग है। इसलिए राजनैतिक मतों स्वार्थों और संकल्पों में टकराहट न होने दें। वैसे भी मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए इस बड़े भाग्य को खोना मूर्खता है। मिटा दें अपने मन से सारा जहर और बड़ी सोच के साथ जीवन को स्वीकार करें तो आप पाएंगे कि आपका जीवन स्वर्ग बन गया है। और यही मानव की आकांक्षा होती है कि वो सुख और समृद्धि संपन्नता और श्री का वर्णन करे, तो फिर भला हम पीछे क्यों रहें?
1: निश्चय ही सोच बड़ी रखें तो ही सफलता बड़ी होगी। कल्पना कीजिए, अगर महात्मा गांधी ने सोचा होता कि मुझे बहुत बड़ा वकील बनना है, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा, तो फिर वहीं रह जाते। नहीं, उन्होंने सोच को और व्यापक किया और विस्तृत किया, अपने दिल के आयतन को बढ़ाया और लड़े वो पूरे दबे कुचले समाज की ओर से और पूरे देश को आज़ादी दिलाई। तो निश्चित रूप से सोच बड़ी रखेंगे तो सपने बड़े होंगे और फिर फल भी बड़ा होगा। सुने अपने आज के विचार, सोच बड़ी रखें। आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के ठीक 6:10 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री गणेश करते हैं गाइए गणपति गजवंदन, एफ सी पंवार के स्वर में।

हरिओम शरण के भक्तिमय प्रस्तुति के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बाल कांड के दोहा संख्या 154 से दोहा संख्या 156 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

रामचरितमानस गान के अंतर्गत आज आपको हमने सुनवाया बालकांड दोहा संख्या 154 से दोहा संख्या 156 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर महेंद्र कपूर का था, संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:41 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आज संध्या 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य एस्बेस्टन बर्मिंगहम इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। संध्या 7 बजे से आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एस्बेस्टन बर्मिंगहम इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। मैच की समाप्ति तक ये जारी रहेगा।

बताऊँ, इसी सभा में अब से कुछ ही पलों में यानी 6:45 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम खेती की बातें। विषय रहेगा दुग्ध कृषि। वाचक स्वर होगा श्री सत्यनारायण शर्मा का। लोक भजन आप सुनेंगे 6:50 पर। कार्यक्रम सुप्रभात होगा प्रातः 7 बजे से, जिसमें आपको हम एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे। विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टर ऋषि माथुर से श्रीमती

0: कार्यक्रम सुप्रभात होगा प्रातः 7 बजे से, जिसमें आपको हम एक भेंटवार्ता सुनवाएंगे विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टर ऋषि माथुर से श्रीमती मीनाक्षी मलिक की बातचीत 7 बजे सुप्रभात कार्यक्रम के अंतर्गत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। इसके बाद फिल्म संगीत का लुत्फ आप फिर से लीजिएगा प्रातः 10 बजे, जिसमें हम आपको नई फिल्मों से गीत सुनवाएंगे। फिल्म संगीत फिर से प्रस्तुत होगा दोपहर 12:40 पर और दोपहर 2:30 पर। सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनवाएंगे वार्ता योग करें निरोग। वार्ताकार होंगे श्री रवि पुरोहित 8:30 पर सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत। सुगम संगीत सुनेंगे आप 8:45 पर। प्रातः 9:10 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम। बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम मुकुल प्रातः 9:30 पर। आज की प्रस्तुति मीनाक्षी स्वर्णकार की रहेगी। चर्चा होगी गर्मी की छुट्टियों में छोटे छोटे खोजी और कलाकार बने। 10 बजे प्रस्तुत होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 11 बजे सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का 13वां संस्करण। 11:35 पर समय रहेगा फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर, जिसमें एक वार्ता सुनवाएंगे शिक्षा और मानवाधिकार। वार्ताकार होंगी श्रीमती आरती जुनेजा। युवाणी सुनिएगा संध्या 5:05 पर और फिल्म संगीत संध्याकालीन सभा में होगा 6:05 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा संध्या 6:42 का। तो श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है दुग्ध कृषि। वाचक स्वर है श्री सत्यनारायण शर्मा का।
1: किसान भैया राम राम। आज आप अपना करा काम री बात और वो तो आप जाना यहाँ के खेती बाड़ी दिखो अपनो आजीविका रो मोटो साधन है। पर जट है अपने खेती बाड़ी सीमित समय रसा गया करे, सीमित संसाधन रसा गया करे और सिंचाई रा साधन नहीं हुए तो आप बड़ा दूसरा काम भी करा करें। और बीर में एक मोटो काम है अपनो पशुपालन रो। और पशुपालन में भी जिको अपनो विशेष रूप पर बात करा डेयरी फार्मिंग यानी दुग्ध कृषि, जिकेर मैंने आपा चाहे वह गाय हो चाहे भैंस हो बकरियां हो भेड़ हो बियाने आपा पालन पोषण करा और बियारो दूध और दूध रा उत्पाद आपा जिका है वह विपणन करा करा बेचा करा बिहू अपनी आजीविका जी की चलाया करा। तो दुग्ध कृषि मैंने किसी बातों पर ध्यान रख सका हाँ जिके सु कही है आपा अपनी आमदनी बढ़ा सका कि भाई डेयरी फार्मिंग एक उत्पादक व्यवसाय है जिके में आप पशुओं ने चोखो पोषक जिका आहार दिया करा बियानो पालन पोषण करा और बियाँ दूध और दूध उत्पाद ले आप बेचा करा। डेयरी फार्मिंग में दूध उत्पादन अलावा आप छाछ है घी है दही है पनीर है और बियाना उत्पाद भी बनावा और बियाना सागे सागे देखो दूध और दूध री मिठाई भी जिकी है बनिया करें। डेयरी फार्मिंग सारू अपने एक स्थिर और शांत मौसम और जगह जी की है गौशाला खातर या पशुशाला खातर चई जा करे और भी स्थान और चयन जी को है अपन पशुओं खातर मौसम अनुसार पानी री व्यवस्था अनुसार बियाने पशु आहार है बियाने उपलब्ध अनुसार अपन चयन जी को बियारो करा करा। खाने पीने ले अपन पशुओं जो को स्वास्थ्य है बियारो बापा विशेष जी को है वो ध्यान रखना है अपन पशु चिकित्सकों मिल परार बियानी जांच करानी और जिका जरूरी टीकाकरण है पशुओं वह अपने बगत सारू करना चाहिए जिके सु कहें कि अपना पशु बीमार नहीं हुए और बिहारी उत्पादकता जिके बा प्रभावित नहीं हुए। कहने का मतलब वो है कि दूध जिका दुधारू पशु है वह आप पूरा दूध देवे और आप अपने फार्मिंग है डेयरी फार्मिंग है भी ले सका। और दूध री जत बात करा हाँ कि भाई देखो पशु दूध तो देवे है पर दूध निकालने रो तरीको या दूध निकालना भी बगत अपने कहीं सावधानी रखनी चाहिए बीरो भी अपने ध्यान होना चाहिए। भाई दूध निकालने पहला अपने जिका पशु जिका थन है बिहार पानी चौकी तरह धोना चाहिए। दूध अपने पूरे हाथों निकालना चाहिए या आजकल जिकी मशीनें भी वापर गई है दूध निकालने लिए बियानों पर उपयोग करना चाहिए यदि अपने पशुओं की संख्या घनी है। दूध निकालते वक्त

0: हनुमान दास साथी और उनके स्वर साथियों में के स्वर में आपने सुना ये लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अंतर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते संदेशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयं। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी

0: नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं 7 क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

रात की चादर धीरे धीरे सिमट रही है, क्षितिज पर सुनहरी रोशनी अपनी दस्तक दे रही है, पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदें मानो प्रकृति के हस्ताक्षर हों, और सुबह हवाएं ये संदेश लेकर आई है कि हर नया दिन नई संभावनाओं का नाम है। जी हाँ, उगते सूरज के साथ जागते हैं सपने और जागती हैं वे उम्मीदें जो जीवन को आगे बढ़ने का साहस देती है। इन्हीं प्यारी सी सकारात्मक भावनाओं के साथ मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने माल को, स्वागत करता हूँ आपका कार्यक्रम सुप्रभात में। श्रोताओं, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। यह दिवस उन स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है जो अपने रक्तदान से अनगिनत लोगों को जीवन दान देते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि इसका कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। ये फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी फार्मेसी में भी नहीं बन सकता। तो एक यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और बता दें आपको श्रोताओं की ओ नेगेटिव जो ग्रुप है उसको यूनिवर्सल डोनर और AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है।

जबकि ए बी नेगेटिव और बी नेगेटिव जैसे रक्त समूह अपेक्षाकृत काफ़ी दुर्लभ माने जाते हैं। इनकी अगर किसी के पास या इनके रिश्तेदार में किसी जान पहचान में ये ग्रुप हो तो उन्हें ज़रूर अपने आसपास मेडिकल कॉलेज में अपने को रक्तदाता के रूप में ब्लड समूह के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सके। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है और रक्तदान के दौरान केवल 350 से 450 ml रक्त ही लिया जाता है जिसकी पूर्ति लगभग 4-5 दिन के अंदर पूर्ण रूप से हो जाती है। तो रक्तदान करना बेहद खुशी का पल होता है। लोग हर 6 माह से रक्तदान कर लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति बड़े आराम से रक्तदान कर सकता है, तो ज़रूर आप भी रक्तदान कीजिए। और सुनते हैं थोड़ा सा रक्त बढ़ाने वाला एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। अब

0: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक भेंट वार्ता। विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टर ऋषि माथुर से श्रीमती मीनाक्षी मलिक की बातचीत।
1: 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और कहते हैं ना कि रक्तदान ही महादान होता है, और न जाने इससे किस किस की जान बची है। तो आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर ऋषि माथुर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन PBM हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न ये है कि रक्तदान क्यों जरूरी है और 14 जून को ही रक्तदान दिवस क्यों मनाया जाता है?
2: जी मैडम, सबसे पहले तो रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: भारत में हर साल लाखों लोगों को एक्सीडेंट, सर्जरी, कैंसर, थैलेसीमिया, प्रसव जैसे कारणों से रक्त की आवश्यकता होती रहती है। एक यूनिट रक्त से कम 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रेड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, हम होल ब्लड जो ब्लड डोनेट होता है उसे हम पृथक कर लेते हैं, तो कम से कम एक डोनेशन से 3 जनों की जान बच सकती है। इसलिए जिस तरीके से थैलेसीमिया के बच्चों को, कैंसर के मरीजों को, सर्जरी या एक्सीडेंट हुए हुए मरीजों को रक्त की जरूरत बार बार पड़ती रहती है, इसलिए हमें रक्तदान करना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, ये 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, इसकी कोई विशेष महत्ता है उस दिन?
2: जी, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर, जी, जो फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कहा जाता है जिन्हें, उनका जन्म दिवस है इस दिन, इसलिए 14 जून को पूरे विश्व में रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
2: जी बिल्कुल, ये एक रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने का एक संदेश है।
1: जी,
2: इसी वजह से डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, जिन्होंने ABO रक्त समूह की डिस्कवरी की थी,
1: जी डॉक्टर,
2: जिस वजह से 14 जून के दिन रक्तदान दिवस मनाया जाता है।
1: जी डॉक्टर, डॉक्टर साहब, अभी आपने एक थैलेसीमिया शब्द बोला, उसमें क्या रक्त बहुत ज्यादा चढ़ाना पड़ता है?
2: जी,
1: ये मतलब क्या है?
2: थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है
1: जी,
2: जो जन्मजात अपन को मिलती है किसी बच्चे को। इसमें क्या होता है,

0: जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर वो बन
1: जी
0: नहीं पाता है ढंग से,
1: जी
0: जिस वजह से बच्चों को समय समय पर या तो हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्तों में कम से कम रक्त की जरूरत पड़ती ही है। तो हम बच्चों को हर 2 हफ्ते में रक्त चढ़ाना पड़ता है,
1: जी
0: जिस वजह से अगर रक्तदान नहीं होगा तो उन बच्चों को रक्त नहीं मिल पाएगा, जिससे
1: जी
0: उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है रक्तदान सच्ची में महादान है।
0: जी
1: इससे जाने
0: बिल्कुल
1: कितने लोगों की जान बच सकती
0: जी।
1: है। रक्तदान से व्यक्ति को क्या क्या फायदे हैं डॉक्टर साहब?
0: रक्तदान करने से सबसे पहला जो फायदा मैं मानता हूँ वो ये होता है कि आप रक्तदान जब करते हैं तो उससे किसी की जान बचती है,
1: जी
0: उससे बड़ा फायदा शायद ही अपन किसी चीज़ को कह
1: जी
0: सकते हैं।
1: डॉक्टर
0: दूसरी बात, अगर हम बात करें तो रक्तदान करने से जो डोनर होता है उसको
1: जी,
0: भी बहुत सारे तरीके के फायदे मिलते हैं,
1: जैसे
0: जैसे कि
1: कि
0: उसका एक फ्री हेल्थ चेकअप हो जाता है
1: जी
0: जिसके किसी तरह के कोई उनको पेमेंट नहीं करना पड़ता, जैसे कि हीमोग्लोबिन की जांच हो जाती है, उनकी
1: जी
0: ब्लड प्रेशर की जांच हो जाती है। वह रक्तदान करने के बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं करना,
1: जी
0: वो कर लेते हैं तो उन्हें ये पता लग जाता है कि उनके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी है या नहीं है।
1: जी डॉक्टर
0: अगर होती है तो समय पर इलाज हो सकता है उनका। साथ
1: जी
0: ही रक्तदान करने से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अगर आयरन
1: जी
0: ओवरलोड हो कभी तो आयरन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे हृदय जो है वो स्वस्थ रहता है। कैंसर
1: जी
0: की भी रिसर्च आजकल हो रही है कि रक्तदान करने से कैंसर की भी आपको संभावना जो होती है वो कम हो जाती है।
1: जी
0: इसी तरीके
1: डॉक्टर
0: से बहुत सारे फायदे हैं रक्तदान करने के।
1: तो डॉक्टर आपने बताया कि जो कोई संक्रमण
0: जी
1: अगर हमें पता नहीं लगता,
0: जी
1: रक्तदान करते वक्त टेस्ट के द्वारा हमें
0: जी
1: उसका भी पता
0: पता
1: लग
0: लग
1: सकता
0: जाता
1: है, इसलिए रक्तदान भी बहुत
0: है, बहुत
1: आवश्यक है।
0: आवश्यक है।
1: तो डॉक्टर साहब, रक्तदान की कोई उम्र है या हर उम्र का आदमी रक्तदान कर सकता है, और साल में कितनी बार
0: जी
1: रक्तदान कर सकते
0: जी
1: हैं?
0: रक्तदान करने की मिनिमम एज जो भारत के द्वारा निर्धारित है वो
1: जी
0: है 18 साल। तो मिनिमम
1: जी
0: आपको 18 साल का होना पड़ेगा रक्तदान करने के लिए। वह जो ऊपर वाली लिमिट है एज
1: जी
0: की वो है 65 साल, अगर आपने पूर्व में रक्तदान किया है तो, नहीं
1: जी
0: तो आप 60 साल तक रक्तदान कर सकते हैं यदि आप पहली बार रक्तदान करना चाहते हैं तो।
1: जी और डॉक्टर साहब, साल में कितनी बार
0: अगर
1: है?
0: पुरुष है तो वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है, वह
1: जी
0: अगर महिला है तो हर 4थे महीने के बाद में ब्लड डोनेट कर सकती हैं।
1: और डॉक्टर साहब, कितना यूनिट हम एक टाइम में ब्लड डोनेट कर सकते
0: जी
1: हैं?
0: एक टाइम में यदि आप 45 किलो से ऊपर हैं,
1: जी
0: मिनिमम जो वेट का क्राइटेरिया है वो भी 45 किलो है,
1: जी
0: अगर 45 किलो से आप ऊपर हैं तो आप 350 ml आराम से ब्लड डोनेट कर सकते
1: डॉक्टर साहब, रक्तदान की क्या कोई शर्तें भी हैं, या हर कोई आदमी इस आयु का कर सकते हैं जाके रक्तदान?
0: जी। शर्तें नहीं बोल सकते उनको,
1: जी
0: एक मेडिकल कंडीशंस बोल सकते हैं
1: जी
0: ज़रूर, यदि आप फिट हैं बिल्कुल,
1: जी
0: जो कि वहाँ बैठे एक्सपर्ट चिकित्सकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि
1: जी
0: वो एग्जामिनेशन करने के बाद आपको पाते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपका रक्त बिल्कुल सुरक्षित है किसी मरीज को चढ़ाने के लिए,
1: जी
0: तो आप बिल्कुल इस उम्र के कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
1: और आपने बताया डॉक्टर, हीमोग्लोबिन उसका जो मात्रा है वो भी सही होनी
0: जी
1: चाहिए
0: बिल्कुल,
1: रक्तदान करते समय।
0: मिनिमम आपका हीमोग्लोबिन 12.5 या उससे ऊपर होना चाहिए।
1: जी क्या ये पुरुषों और महिलाओं का भी अलग अलग है डॉक्टर साहब?
0: नहीं, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सेम है, 12.5 से ऊपर आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए।
1: जी डॉक्टर, कई बारी डॉक्टर साहब, हर बीमारी के साथ
0: जी
1: या कहें हर बात के साथ कुछ भ्रांतियां जुड़ी
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: रक्तदान के साथ भी
0: जी
1: हमने सुनी है कुछ भ्रांतियां
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: जो पहली भ्रांति हमने सुनी है वो है कि महिलाओं को रक्तदान नहीं करना
0: जी
1: चाहिए, इससे उनकी बांझपन आता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: क्या ये सही है डॉक्टर?
0: ये बिल्कुल एक तरह का जिसे बोलेंगे मिथ है,
1: जी
0: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं बिल्कुल रक्तदान कर सकती हैं, वो
1: जी
0: स्वस्थ हैं तो वो बिल्कुल रक्तदान कर सकती हैं।
1: जी
0: महिलाएं आजकल हर फील्ड में सबसे आगे निकल रही
1: जी
0: हैं, तो हम चाहते हैं कि रक्तदान के क्षेत्र में भी वो सबसे आगे निकलें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उससे किसी तरीके का बांझपन आएगा या किसी तरीके की कोई
1: जी
0: कमजोरी आएगी उनको,
1: जी
0: अगर वो स्वस्थ हैं तो वो बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर, और क्या पता रक्तदान करते समय उनको कोई संक्रमण हो तो उसका भी पता लग जाए,
0: जी
1: क्योंकि
0: वो
1: हमने
0: सब
1: सुना है कितनी बार कि वो ब्लड डोनेट करने गए थे, उनसे उनको बीमारी का पता लगा
0: जी
1: तो वो अपना इलाज आगे करा
0: करा
1: सकते हैं।
0: सकते हैं।
1: एक और भ्रांति डॉक्टर साहब रक्तदान से जुड़ी
0: जी
1: है कि रक्तदान से क्या कमजोरी आती है, आदमी कमजोर हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, ऐसा कुछ है डॉक्टर
0: जी
1: साहब?
0: बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा, रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती।
1: जी
0: हाँ, कुछ एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं वो, पर इस तरीके से नहीं है कि वो ब्लड डोनेशन से ही हो रहे हैं।
1: जी
0: कभी कभी हम ज्यादा घबराए हुए होते हैं,
1: जी
0: कभी हमें गर्मी लग रही होती है, या
1: जी
0: हमें कुछ पहले हमने खाया हुआ नहीं होता, हम भूखे पेट होते हैं, तो हो
1: जी
0: सकता है हल्के फुल्के चक्कर आ सकते हैं, अदरवाइज किसी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं आ सकती। ये बिल्कुल एक भ्रांति है कि
1: जी
0: रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है,
1: वो एक मानसिक तनाव भी हो
0: वो
1: सकता
0: मानसिक
1: है।
0: तनाव भी हो सकता
1: जी
0: है।

0: डॉक्टर, एक और भ्रांति डॉक्टर साहब, क्या बार बार रक्तदान करने से लत लग जाती है या उसके बिना आदमी रह नहीं सकता? सुनने में ही लग रही है कि ये भ्रांति होगी।
1: जी जी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लत नहीं लगती है। बट हाँ, अगर आपको रक्तदान की लत है तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: सही कह रहे हैं।
1: आप अगर हर समय समय पर जो आपका ड्यूरेशन है उस समय में अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट हाँ, लत लग जाएगी ऐसा कुछ नहीं।
0: जी डॉक्टर, एक और खास सवाल डॉक्टर साहब, क्या रक्तदान से संक्रमण हो सकता है?
1: जी नहीं, रक्तदान से बिल्कुल भी संक्रमण नहीं होता, क्योंकि जो भी रक्तदान के लिए बैग या सुई लगाई जाती है वो बिल्कुल अलग और स्टेराइल होती है। एक बार यूज आने के बाद उसको फेंक दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति में उसका यूज नहीं किया जाता। तो हर बार जब भी आप ब्लड डोनेट करने के लिए आएंगे, आपके लिए एक नया बैग, स्टेराइल बैग निकाला जाएगा जिससे आपका ब्लड लिया जाएगा।
0: जी डॉक्टर, क्या रक्तदान की प्रक्रिया दर्दनाक है?
1: बिल्कुल भी नहीं, रक्तदान की प्रक्रिया बिल्कुल दर्दनाक नहीं होती है।
0: कई लोग इस दर्द की वजह से ही नहीं जाते, सुई का जो डर है, नेडल की प्रिक करने से पता नहीं कितना दर्द होगा या कितने दिन होगा, इसकी वजह से भी डॉक्टर साहब कई लोग जाते ही नहीं।
1: जी, हमें सबको चींटी ने तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में खाया ही होगा ना, बस उतना ही दर्द होता है जब एक सुई चुभती है। उसके अलावा पूरे रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही दर्द रहित होती है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है।
0: जी डॉक्टर, और इतने से अगर चींटी के काटने जितना दर्द होता है और उससे किसी की जान बचती है डॉक्टर साहब, तो मुझे लगता है कोई भी इस दर्द को सहन करने के लिए तैयार हो सकता है। क्या रक्तदान के उपरांत कुछ सावधानियां रखनी होती है डॉक्टर साहब?
1: रक्तदान करने के पश्चात
0: जी,
1: रक्तदान जैसे ही आप कर लें तो आपको हम वहां पे 10-15 मिनट के लिए उसी काउच पे लेटा के रखते हैं
0: जी।
1: उसके बाद हम 15 मिनट बाद में आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपको एक रिफ्रेशमेंट दिया जाता है ब्लड डोनेशन के बाद में। और कुछ सावधानियां जरूर रखें कि आप अगले 24 घंटे में अच्छी मात्रा में पानी पिएं या लिक्विड या तरल पदार्थ का सेवन करें। किसी प्रकार की अगर आप नशा करते हैं तो वो ना करें। साथ ही अगर आप ड्राइविंग करते हैं, हम कहेंगे कि भाई आप रक्तदान के तुरंत बाद ड्राइव ना करें। बाकी किसी तरह की और कोई दिक्कत होती नहीं है, और रक्तदान के बाद में किसी तरह का भारी सामान उठाने से परहेज करना चाहिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद आप बिल्कुल जो भी करना चाहे कर सकते हैं।
0: क्या डॉक्टर साहब, जो मदिरा पान करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं या स्मोक करते हैं या किसी प्रकार का जो नशा करते हैं, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि इन सब चीजों का नशा नहीं करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर,
1: ये सब चीजें बहुत ही खतरनाक होती हैं और आपके स्वास्थ्य पे एक गलत असर डालती हैं।
0: तो इसकी लत नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब, नहीं होनी चाहिए। रक्तदान की बेशक हो,
1: रक्तदान की बेशक हो, पर इन सब चीजों की लत नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, जैसा कि आपका प्रश्न था कि ये डोनेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं, परंतु जो चिकित्सक वहां पे बैठे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अंततः वही डिसाइड करेंगे कि क्या आप उस समय स्वस्थ हैं ब्लड देने के लिए या नहीं।
0: जी डॉक्टर, एक डॉक्टर साहब ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं
1: जी,
0: जो हमने सुना ए बी, क्या ये भी रक्तदान से संबंधित है?
1: ये रक्तदान से संबंधित नहीं है, पर हाँ, हर तरह के ग्रुप होते हैं, जैसे आपने बताया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इन सबके नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ये सभी प्रकार के रक्त समूह होते हैं
0: जी।
1: परंतु हाँ, हमें सभी तरह के रक्त चाहिए होते हैं, क्यों? क्योंकि मरीज का क्या रक्त समूह है वो हमें नहीं पता होता, वो जिस समय हमारे पास ब्लड की रिक्वेस्ट आती है तभी हमें पता लगता है। तो हाँ, आपका जो भी रक्त समूह है, आप इरिस्पेक्टिव आप आए और रक्तदान जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मरीज को उस रक्त समूह की जरूरत जरूर पड़ेगी।
0: जी डॉक्टर, ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला इंसान रक्तदान दे सकता है
1: जी।
0: और ये भी बताया कि जो रक्तदान दे रहा है उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जो रक्त ले रहा है जो रेसिपिएंट है डॉक्टर साहब, उसको भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए?
1: नहीं, वो तो एक मरीज है, उसको किसी तरह की सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वहाँ चिकित्सक मौजूद हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं कि क्या रक्त कब चढ़ना चाहिए और कैसे चढ़ना चाहिए और किस अमाउंट में चढ़ना चाहिए। तो सावधानियां मरीज को रखने की जरूरत नहीं
0: जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा कि रक्तदान एक बहुत जरूरी चीज है
0: जी,
1: जो हर समय कभी ना कभी किसी ना किसी को रक्त की जरूरत पड़ती ही रहती
0: जी डॉक्टर।
1: तो मैं सभी श्रोताओं को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया बिना किसी ओकेजन के, बिना किसी जैसे
0: मुहूर्त के
1: आप आए और रक्तदान जरूर करें
0: जी।
1: और अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि आप कभी भी रक्तदान कर सकते हैं
0: और कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इन जो रक्तदाता हैं इनको प्रायोरिटी पे अगर ये देते हैं तो मिलता भी है डॉक्टर साहब।
1: जी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जिन्होंने रक्तदान किया हुआ है और अभी वो रक्तदान करने योग्य नहीं है, तो हमारे पास अगर अवेलेबल है ये चीज

0: आपके माध्यम से श्रोताओं को ये समझाना चाहूँगा कि ब्लड बैंक में ज़रूरी नहीं है हमेशा रक्त हो, बट
1: जी
0: हाँ बीकानेर के रक्तदाताओं का मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे पास हमेशा रक्त की इतनी क्वांटिटी रहती कि हमारे पास कभी भी आज तक किसी मरीज को रक्त की कमी की वजह से कुछ नहीं हुआ है।
1: जी डॉक्टर, ये की तारीफ लायक बात है ये।
0: बिल्कुल, ये बीकानेर के सभी रक्तदाताओं का मैं धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से।
1: जी डॉक्टर, तो श्रोताओं आइए रक्तदान के अवसर पर हम संकल्प लें कि स्वयं रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर डॉक्टर ऋषि माथुर से श्रीमती मीनाक्षी मलिक की बातचीत। श्रोताओं, अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण, एक अन्य विषय की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अत्यधिक शोर सुनने की क्षमता को प्रभावित करने के साथ साथ तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। सामान्य बातचीत में लगभग 60 डेसिबल की होती है, पर व्यस्त और यातायात वाले क्षेत्रों में जब ध्वनि स्तर 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है तो ये तो ध्वनि प्रदूषण ही है। ध्वनि प्रदूषण बच्चों की एकाग्रता, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और पक्षियों के प्राकृतिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग कम करना, लाउड स्पीकर का संयमित उपयोग, वाहनों का नियमित रखरखाव, साइलेंस जोन का पालन इसके प्रभावी उपाय हैं। तो हमें ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए, जहां तक हो सके ना तो हम करें और ना किसी को करने दें। तो प्रकृति की मधुर ध्वनियां हमेशा ही आप जानते हैं कि मन को सुकून देती हैं। तो सुनते हैं बरसात की एक धुन जो ध्वनि प्रदूषण से दूर किसी प्यारी सी दुनिया में आपको ले जाएंगे।

श्रोता, चर्चा करते हैं गरीब कल्याण से राष्ट्र निर्माण की। तो किसी भी राष्ट्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचता है। जब गरीब व्यक्ति और जरूरतमंद वर्ग सशक्त होते हैं, तभी राष्ट्र की प्रगति जोर पकड़ती है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और पीएम स्वनिधि योजना जैसी बेहतरीन योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जून आ रहा है, यानी कि विश्व योग दिवस आ रहा है, तो बात करते हैं योग की। योग शरीर, मन और चेतना के संतुलन की एक वैज्ञानिक

करती है और आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर चुकी है। योग की सरल और प्रभावी तकनीकों में जैसे हम जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे विशेष रूप से लोकप्रिय, ये तो कोई भी कर सकता है, सभी को करना चाहिए और बहुत ही आसान है। अपने श्वसन तंत्र को सुदृढ़ बनाने, मानसिक तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हो सकता है आपका प्राणायाम। तो ये शरीर और मन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद भी करता है। तो योग हमें सिखाता है कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक विचार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो श्रोताओं, राह चाहे नई हो या पुरानी, विश्वास के कदम उन्हें आसान बना देते हैं। ज्ञान का एक दीप प्रतिदिन जलता रहे, संवेदनाओं का एक फूल प्रतिदिन खिलता रहे और जीवन की पुस्तक में आज का दिन एक सुंदर अध्याय बनकर दर्ज हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मालकोस आपसे अनुमति लेना चाहूंगा सुप्रभात कार्यक्रम में इस गीत की विदाई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामार चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आंखें के इस गीत के साथ,

जतिन ललित के संगीत में प्रवीण भारद्वाज ने रस घोला है अपने बोलों के साथ, और सोनू निगम अलका याग्निक ने बेहतरीन गायकी का नमूना पेश किया है। फिल्म आंखें के लिए सुनते हैं कुछ कस्में हैं जवान।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: लीजिए आप सुनते हैं फिल्म किसना से अगला गीत, उदित नारायण और मधुश्री की मधुर आवाजों के साथ। संगीत है इस्माइल दरबार का और गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने। संगीत है AR रहमान का और लिखा है इसे जावेद अख्तर ने।
1: कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

श्रोताओं, दिल की बात अक्सर शब्दों से पहले एहसासों को जन्म देती है। कभी कोई अनकही भावना, कभी कोई मीठी स्मृति और कभी किसी अपने का ख्याल मन में हल्की सी दस्तक देता है। ऐसे ही कोमल एहसासों को खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है ये गीत तेरे मेरे सपने फिल्म से है। विजू शाह का बेहतरीन संगीत है और आवाज़ है ए हरिहरन और साधना सरगम की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, बारिश का मौसम सिर्फ बूंदें पानी की ही नहीं लाता, ये अपने साथ ढेर सारी यादें, भावनाएं और अनकहे एहसास भी लेकर आती हैं। बरसती हुई बूंदें कभी मन को प्रफुल्लित कर देती हैं, तो कभी किसी की याद को और गहरा कर देती है। तो अगला गीत और बल्कि आखिरी गीत ऐसे ही गीतों, ऐसे ही भावों को अभिव्यक्त करता है। इसमें सावन की फुहारों के बीच प्रतीक्षा है, प्रेम है और फिर मिलन की आकांक्षा के सुंदर रंग है इस गीत में। जब मौसम भीगा भीगा हो और मन किसी अपने की याद में डूबा हो, तब दिल की भावनाएं कुछ इसी तरह सुरों में ढल जाती और साधना सरगम ए हरिहरन की इस जोड़ी से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर से सुनते हैं इन्हीं को हम, सावन बरसे तरसे दिल।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के बजने को है 8 और अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: निकले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न

0: केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक

0: बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: स्पेशली द कंट्रीज लाइक आर्स।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का

0: निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled Fashion to Furness, some luxe gold watches fail the test of time, the Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक वार्ता, योग करे निरोग। वार्ताकार हैं श्री रवि पुरोहित।
3: राजस्थानी लोक परंपरा रे सीगे बात करा तो पहलो सुख निरोगी काया बताई जो है। काया में तन और मन दोनों भेड़ा आ जावे। आज जठी ने भी देखा चौफेर हारी बीमारी मांदगीरो रापारोड़ो दिखे। ईरो सबसे मोटो कारण अपनी जीवन शैली में आयो बदलाव, खान पान और शारीरिक खेचड़ खपत री कमी है। इन्हीं वास्ते कई रोगों में दवा असर नहीं करे और तद योग रे टाल कोई दूजो गेलो निगे नहीं आवे। अगर कविताई दीठ सू बात करूं तो जीवन शैली घणी विशेली, आलस बदियो व्याधि फैली, जे चावो निरोगी काया योग ने धारो नित योग करो। तन निरोगो मन निरोगो, कल झड़ मीटे ऊर्जा मिले, आत्म शुद्धि करे है योग, व्याधियां सू लड़े है योग। योग शब्द संस्कृत रे युज धातु सू बण्यो है, जिनरो अर्थ हुए शारीरिक और मानसिक सगतियां रो संजोग। योग एक कसरत है जिकी मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य ने चाकसर रख है। योग एक ऐसी कला है जिकी आपने तन मन और आत्मा ने एक साथ जोड़े। योग कोई व्यायाम के फगत कसरत नहीं है, क्योंकि आपां देखा कि आजकल है लोग कसरत रो अर्थ ही योग सुन लेवे है। तो योग कोई व्यायाम का फगत कसरत नहीं है, बल्कि वो जीवन जीवने रो एक सलीको और तरीको है। आज रो चिकित्सा विज्ञान भी कई रोगा में और स्वस्थ जीवन जीवन सारू योग री सलाह देवे। आप री इनी खासियत पाण योग आखी दुनिया रे लोक परंपरा रे व्यवहार में शामिल हो गयो है। योग री आध्यात्मिक दीठसू मिनक और परमात्मा रो जोड़ बने वठाई, स्वास्थ्य री दीठसू शरीर और मन रो तालमेल बैठा हुए। कई लोग आसन और प्राणायाम ने योग माने, जद का योग एक अकूत विषय है जिकरो नैनो सो विषय आसन है, जिको शरीर ने स्वस्थ और निरोग राखण सारू करो जावे। भारत देश में योग जुगा जुगा सू जीवन सूत्र रूप में काम में लिरीस्तो रहे है। योग रो जलम प्राचीन भारत में हजारों हजार साल पहली हुई हो। पहले धर्म के विश्वास प्रणाली रे जलम शू भी पहली हुई हो योग रो जलम। मान्यो जावे के शिव पहला योगी के आदि योगी और पेलड़ा योग गुरु है। हजारों साल पहली कंटिसा रोकर झील रे तट माते आदि योगी आप रे ज्ञान ने 7 महान ऋषियां साथ है शीर साझा करियो हो, क्योंकि योग रे अकूत ज्ञान ने 1 मिनट कट तक बांध राखनो संभव हो

अनोखो काम हो। ऋषिया इन शक्तिवान योग विज्ञान ने समूची दुनिया में फैलायो। भारत ने इन पूरी परंपरा में योग प्रणाली ने पावने रो आशीष मिलियोड़ो है। योग रे जानकारा मुजब योग री उत्पत्ति भारत में लगे टगे 5000 वर्ष सु भी पहली हुई। ऐतिहासिक प्रमाण की बात करा तो आ खोज 1920 री शुरुआत में हुई। 1920 में पुरातत्व वैज्ञानिक सिंधु घाटी सभ्यता री खोज करी, जिनमें प्राचीन हिंदू धर्म और योग री परंपरा होने रा सबूत मिला। सिंधु घाटी सभ्यता री बात 3300 से 1700 ईसा पुरानी है। योग माथे पहलो व्यवस्थित ग्रंथ योग सूत्र महर्षि पतंजलि लिख्यो। पतंजलि अष्टांग योग में योग रा 8 सूत्र बताया। आ 8 अंगारा आपरा उप अंग भी है। आजरी बात करा तो योग रा 3 अंग घना प्रचलन में है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। राजस्थानी साहित्य और संस्कृति में योग री एक निर्वाली छिब और मठोट रही है। रोजमर्रा रे जीवन में जिकी घर परिवार रा काम काज खासकर लुगाई जात करती रही है, वा में योग और ध्यान देखण ने मिले। गट्टी पीसती लुगाई, बिलोवणो करती लुगाई, कुत्तर काटती लुगाई, टाबर ने गोदी में हुजरावती लड़ावती लुगाई, दोवड़ा मूनिया घड़ा में पानी भर सिर पर ल्यावती लुगाई, जेड़ा किता ही काम ईशा है जिका मतो मती ही योग री क्रियावां करवा देवता। खेत में निनाण, लावणी, टावरा री बाल क्रीड़ा में ही योग विद्या रे ध्यान और कर्मरा दोनों रूप देखण न मिले। मुसलमान भाई जी की नमाज अदा करे बी में भी योग री खेचल निगावे। आ सब क्रियाओं में मानसिक ध्यान साथ है दैहिक संतुलन हुए। विमला महरिया ऊर्मावान कवियत्री है, वह दोहो लिखे, योग निरोगा री सखी रोगी डारो राम, योग कर्या सुख सो गुणो योग ही सुख रो धाम। योग समय री मांग है, योग समय रो पथ, योग साव सरजीवनी योग निरोगो तथ। राजस्थानी में हरजसरो एक दाखलो इन गीत में देख सका। जोगीड़ा ने जोग सुहावे, भोगीड़ा ने भोग, जे कोई राम पियारो हुए ये लगावे जोग, मारा राम रुग जी मारा किशन कानूड़ा, मारे जोग लागियो सांवरा काटो मारा सोग, राम जी काटो मारा रोग। नाथ संप्रदाय रे भजना में भी योग रा घना दाखला मिले। ध्यान साधना रे सार में लिखी जे एक दूह में योग ने इन भांत बखानी जो है। योग सनातन सिद्ध का किया प्रारंभ ओंकार, आदिनाथ संग शक्ति ने प्रगटा ज्ञान प्रकाश। अगर योग रे भूमिका री आपा जीवन में बात करा तो योग आपने माथे किया काम करे, अब बात करा शारीरिक सुगढ़ता और निरोग जीवन में योग री भूमिका री। योग सु शरीर में लचीलोपण आवे, चंचलाहट आवे। लोग आजकल अलेकों बात रे दर्द सु पीड़ी तरह आहत है। वे पगरी आंगलियां नी छू सके, नीचे झुकने में वाने तकलीफ महसूस हुए। योग रे लगातार अभ्यास सु इन मन तड़फाऊ दर्द सु सारो मिल सके। योग सु खून री गति शरीर रे मायने योग है जी को बदावे। योग आपने हृदय ने स्वस्थ और निरोग बनावने में मददगार हुए। आपने शरीर और नसा में रगत रो प्रवाह के गति ने चांकसर और ऑक्सीजन सु सराबोर रखे। मानसिक स्वास्थ्य री रुखाड़ करे योग। योग आपने मानसिक रूप सु स्वस्थ रखे। योग क्रिया सु आपनो ध्यान अपनी जीवन अबखाया और कल झलते जमारे री पीड़ावां सु हट जावे और मानसिक दबाव री लगोलग चोट सु उबारे ओ योग। योग अंत शांति देवे। योग अंत शांति पावणे और तनाव रे खिलाफ जूझने में मदद करे। योग मन में शांति रे ओसार ने बधावे और आत्मविश्वास ने मजबूत करे। योग ध्यान केंद्रित करने री शक्ति रो दाता है। योग काया री कलझल ने कम करे, मन ने शांति और आराम देवे, जिनसु तनाव कम हो जावे और आपा आपने काम माते पूरे निठाव सु ध्यान केंद्रित कर पावा। योग ने फगत आसन ताई सीम में बांधने सु

इन्हें पूरे पाठे रूप में या मुकम्मल रूप में नहीं समझो जा सके। शरीर, मन और सांस ने एकजुट करने में योगरा लाभ बस है। योगासन और में इस योग संस्कृति में एक उल्लेख योग विषय रहे है। दूजे देशा में योग मुद्राओं में खड़ो रेवणो, बैठनो, पीठ रबल सोवणो के पेट रबल लेटनो खास रेव है, पर योग रे अर्थाऊ और पारंपरिक वर्गीकरण में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग आवे। ऐस चार खास मुख्य योग शामिल मानी जाए। जीवन में योग बिना स्वास्थ्य, शांति और तनाव मुक्ति संभव नहीं है। योग बिना किनी खर्चे रे शरीरी ऊर्जा सुई इनने निरोग और मन ने शांत राखने री, शांत करने री क्रिया है। आपने ऋषि मुनिया री आ लूंठी परंपरा, आ लूंठी हेमाणी मिनख ने सुख सायंत और जिसोरे सु जीवनो सिखावे और मुक्ति री चावना वाला साधका ने मुगत कर देवे। योग साधना वैदिक युग सु चालती आ रही जीवन शैली है। अठहरा ऋषि मुनिया, योग अंत शांति देव है। योग अंत शांति पावने और तनाव रे खिलाफ जूझने में मदद करे। योग मन में शांति रे ओसार ने बढ़ावे और आत्मविश्वास ने मजबूत करे। योग ध्यान केंद्रित करने री शक्ति रो दाता है। योग काया री कलझल ने कम करे, मन ने शांति और आराम देवे, जिनसु तनाव कम हो जावे और आपा आपने काम माते पूरे निठाव सु ध्यान केंद्रित कर पाव। लेटनो खास रेवे, पण योग रे अर्थाऊ और पारंपरिक वर्गीकरण में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग आवे। ऐस चार खास मुख्य योग शामिल मानी जाए। जीवन में योग बिना स्वास्थ्य, शांति और तनाव मुक्ति संभव नहीं है। योग बिना किनी खर्चे रे शरीरी ऊर्जा सुई इनने निरोग और मन ने शांत राखने री, शांत करने री क्रिया है। आपने ऋषि मुनिया री आ लूंठी परंपरा, आ लूंठी हेमाणी मिनख ने सुख सायंत और जिसोरे सु जीवनो सिखावे और मुक्ति री चावना वाला साधका ने मुगत कर देवे। योग साधना वैदिक युग सु चालती आ रही जीवन शैली है। अठहरा ऋषि मुनिया, वगत वगत माथे खोज, साधना और तपस्या सु योग री सिद्धियां ने अनुभूत करियो है। प्राचीन काल सु आज ताई कोई ईशो वगत नहीं रहो जद योग साधक गुफावां में बैठ साधना नहीं करी, कै गृहस्थ में रेगर योग रो अभ्यास नहीं करियो वे। इया तो भारत में योग रा अनेकों ऋषि हुआ है, पर आमाय सु दो महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ खास रहे है। आज घणकरा योग महर्षि पतंजलि रा बतायड़ा काम में और व्यवहार में बरती जाए, पण पतंजलि री योग साधना मुक्ति री साधना है, जिकी कैवल्य री प्राप्ति वास्ता है। वारे अष्टांग योग में आया आसन और प्राणायाम चित्री सफाई और ध्यान कानी ले जावे। अबे बात करा आपा योग रे फायदा री। तन, मन और आत्मा ने नियंत्रित करने में मदद करे, चांकसर राखने में मदद करे योग। दूजो फायदो देखा तो तन और मन ने संयत राखण वास्ते, नियंत्रण में राखण वास्ते शारीरिक और मानसिक अनुशासन रो एक संतुलन बनावे। योग तनाव और चिंता रे प्रबंधन में सहयोग करे। योग आसन शक्ति, शरीर लचीलेपन और आत्मविश्वास जगावने री दवा रे रूप में काम आवे। योग सत्र में खास तौर पर व्यायाम जिकिने कसरत के वहाँ ध्यान और योगासन शामिल हुए। योग मन री शक्ति और दिल ने मजबूत करे। रगत रो प्रवाह चांकसर ल्यावे और मिनक ने स्वस्थ बनावे। सार रूप में आई कह सका कि योग सधावे साधना, योग रोग सूत्रा।

दूजो फायदो देखा तो तनन आसन शक्ति शरीर लचीलेपन आ चाकसर ल्यावे और मिनख ने स्वस्थ बनावे। सार रूप में आई कह सका के योग सधावे साधना, योग रोग सो त्राण, योग मिलावे राम सो योग।

0: जगावे प्राण, योग जगावे प्राण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: संदेश से पहले सौरभ, कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको सुनवाई वार्ता योग करें निरोग। वार्ताकार थे श्री रवि पुरोहित। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी बता रही है समय, प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं एक गजल के साथ, बेहतरीन गजल भूपिंदर सिंह के स्वर में। अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ।

रात होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। बेहतरीन गजल भूपेंद्र सिंह के स्वर में सुनी आपने। अब सुनते हैं एक गीत स्वाति नाटेकर के स्वर में, आज किसी ने जब बातों बातों में उनका नाम लिया।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट। आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। श्री बिरला ने ये बात कल नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि देश की संस्कृति सभ्यता और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और विकसित भारत में भी इसका महत्व बना रहेगा। श्री बिरला ने शिक्षकों वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं नीति निर्माताओं और किसानों से आत्मनिर्भर कृषि मॉडल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 जवानों में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शामिल हैं। उनका आज नागौर के पैतृक गांव पांचोता में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेमाराम साल 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और देश सेवा का सपना पूरा कर रहे थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी शिविर लगाया गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन को जागरूक कर रक्तदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। पाली CMHO ने बताया कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में

0: रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें रक्तदाताओं की ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच भी की जा रही है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जिनमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
1: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है, जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है। यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस बार परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। परीक्षा के मुख्य समन्वयक और वीएमओयू के कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि 1,26,600 परीक्षार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा निगरानी के लिए जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर से की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है और वहाँ ORS कॉर्नर बनाए गए हैं,
2: जिसमें इस बार की हमारी टीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा ANN घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, साथ में हमारा ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूकता।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। वे कल पंजाब के लुधियाना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़े।
3: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ बढ़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल, पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, साथ ही प्री मानसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के पारे में सबसे अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिलानी में दर्ज की गई। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात का पारा भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से

0: जिक्र होगा। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं जीजा साली के इस गीत के साथ सुप्रिया राजीव के स्वर में।
2: जीजा जी कोणी के जा रहे छो?
3: अरे पावली, मैं तो तुम्हारे गांव जा रहे छू।
2: थारे सागे

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते हैं समंदर खां, रमजान खां और सत्तार खां को बिछुड़ो।

विवाह के मांगलिक कार्य भी रुके हैं, लेकिन हम तो सुनवाएंगे आपको गीत मेहंदी राचन लागी। सीमा मिश्रा और राकेश काला के स्वर में।

इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम। मुकुल लेकर आ रही हैं मीनाक्षी स्वर्णकार।

जय हिंद बच्चों, आपके प्रिय कार्यक्रम मुकुल में आपकी दीदी मीनाक्षी स्वर्णकार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप अच्छे हो और खुश हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने अपनी गर्मी की छुट्टियों का खूब आनंद लिया होगा। किसी ने नानी के घर जाकर मस्ती की होगी, किसी ने अपने दोस्तों के साथ खेल खेले होंगे, तो किसी ने नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश की होगी, है ना बच्चों? तो छुट्टियां शुरू होते ही कितना अच्छा लगता है ना। सुबह जल्दी स्कूल जाने की चिंता नहीं होती, होमवर्क का कोई दबाव नहीं होता और दिन भर अपनी मनपसंद गतिविधियां करने का मौका। मुझे यकीन है कि आप में से कई बच्चों ने कहानी की किताबें पढ़ी होगी, चित्र बनाए होंगे, साइकिल चलाई होगी और अपने परिवार के साथ खूब समय बिताया होगा। मोबाइल भी लेके बैठे होंगे, लेकिन वो थोड़ा आपने स्क्रीन टाइम कम किया होगा। लेकिन बच्चों, छुट्टियाँ केवल खेलने और घूमने के लिए नहीं होती, ये कुछ नया सीखने का भी सुंदर अवसर होती है। क्या आपने इस बार कोई नया पौधा लगाया, कोई नई कला सीखी, या फिर घर के कामों में मम्मी पापा की मदद की? अगर किया है ना, तो सचमुच आपने अपनी छुट्टियों का बहुत अच्छा उपयोग किया है। और अब धीरे धीरे छुट्टियां समाप्त होने वाली है और स्कूल फिर से गुलजार होने वाले हैं। नई कक्षा, नई किताबें, नए सपने और कुछ नया सीखने का उत्साह आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बच्चों, अपनी छुट्टियों की प्यारी यादों को सहेज कर रखिए और जब आपके विद्यालय खुल जाए तो पूरे उत्साह के साथ नए सत्र का स्वागत कीजिएगा। अब हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं इस गीत का।

और बच्चों अब कार्यक्रम में समय है रोचक जानकारी का। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी रंग बिरंगी दुनिया में जहाँ कोई बिना हवाई जहाज के उड़ता है, कोई मधुर गीत गाता है, कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है और कोई अपने सुंदर पंखों से सबका मन मोह लेता है। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे पक्षियों की अनोखी दुनिया की। बच्चों, क्या आपने कभी सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट सुनी है? जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो सबसे पहले पक्षी ही अपने मधुर स्वर से दिन का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं कोई सुंदर संगीत सुना रही हो। दुनिया में पक्षियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती है। कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ इतने बड़े कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। आपको पता है बच्चों, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, जो इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली में समा जाए। और वहीं शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। हालांकि वह उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, पक्षियों के शरीर की बनावट उन्हें उड़ने में मदद करती है। उनकी हड्डियां हल्की होती है और शरीर पर पंख होते हैं और यही कारण है कि वे आसमान में बड़ी आसानी से उड़ पाते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी रास्ता कैसे पहचानते हैं? आखिर वे हजारों किलोमीटर दूर से अपने घर कैसे लौट आते हैं? दरअसल कुछ पक्षी जिन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है, मौसम बदलने पर एक देश से दूसरे देश तक की लंबी यात्रा करते हैं। हमारे भारत में भी हर साल साइबेरिया और अन्य देशों से अनेक पक्षी आते हैं और वैज्ञानिक कहते हैं कि वे सूर्य, तारों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से अपना रास्ता पहचान लेते हैं। कितना अद्भुत है ना बच्चों। और बच्चों, आपने मोर तो देखा ही होगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जब बारिश आने वाली होती है ना तो वो अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करता है।

उसके रंग बिरंगे पंख प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। तोता भी एक बहुत रोचक पक्षी है। उसकी हरी भरी देह और लाल चोंच उसे बहुत आकर्षक बनाती है। कुछ तोते तो इंसानों की आवाज़ की नकल भी कर लेते हैं। और हाँ, कौवा भी कम समझदार नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार कौवे बहुत बुद्धिमान पक्षियों में गिने जाते हैं। वे समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका हल भी खोज लेते हैं। बच्चों, पक्षी केवल सुंदर ही नहीं होते बल्कि प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी भी है। अब आप पूछोगे कैसे? तो वे बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। कई पक्षी कीट पतंगों को खाकर खेती की रक्षा भी करते हैं। इसीलिए पक्षियों को प्रकृति का मित्र कहा जाता है। लेकिन बच्चों, आज पक्षियों के सामने कई चुनौतियां भी है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और जल स्रोतों की कमी के कारण कई पक्षियों को रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाता, और गर्मियों में तो उन्हें पानी की भी बहुत परेशानी होती है। तो क्या बच्चों, हम पक्षियों की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में एक छोटी सी पानी की परिंडी रख सकते हैं, थोड़ा सा दाना भी रख सकते हैं। और हाँ, याद रखिए, आपके द्वारा रखा गया एक कटोरा पानी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगली बार जब आप किसी पक्षी को उड़ते हुए देखें, तो उसे केवल एक पक्षी मत समझिए। वह प्रकृति का संदेशवाहक है, जो हमें स्वतंत्रता, मेहनत, अनुशासन और प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। कहते हैं ना, पंखों में है आसमान, चहचहाहट में प्यार, पक्षी सिखाते हैं हमको प्रकृति से करना प्यार। तो आप भी पक्षियों से दोस्ती कीजिए, उन्हें दाना पानी दीजिए और उनकी मधुर आवाज़ों का आनंद लीजिए।

बच्चों आप भी कैसे, आपकी नींद उड़नछू हो गई और आप मस्ती में डोलने लग गए, है ना। और अब मुझे पता है कि अब आपको बेसब्री से कहानी का इंतज़ार है, तो चलिए सुनते हैं एक शिक्षाप्रद कहानी। बच्चों एक सुंदर से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी, वह हर काम कल पर टाल देता था। मम्मी कहती, मोहन अपना कमरा साफ कर लो, तो वह कहता, अभी नहीं, बाद में, पढ़ाई का समय होता तो कहता, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। एक दिन मोहन गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे एक चमकदार सुनहरी चिड़िया दिखाई दी। उसके पंख धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। चिड़िया बोली, मोहन क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोहन ने आश्चर्य से पूछा, मैं कैसी मदद? चिड़िया बोली, पास के बगीचे में कई पौधे सूख रहे हैं, अगर तुम रोज उन्हें पानी दोगे तो मैं तुम्हें एक खास उपहार दूंगी। उपहार का नाम सुनते ही मोहन तैयार हो गया। अगले दिन से उसने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। पहले तो उसे आलस आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे पौधों से लगाव हो गया और कुछ ही दिनों में पौधों पर नई पत्तियां और रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। एक महीने बाद सुनहरी चिड़िया फिर आई। उसने मोहन को एक सुंदर सा जादुई बीज दिया और कहा, इसे अपने घर के आंगन में लगाना। मोहन ने वैसा ही किया। वह रोज बीज को पानी देता और कुछ दिनों बाद वहाँ एक छोटा सा पौधा निकला और फिर धीरे धीरे एक सुंदर पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगने लगे। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, यह तो सचमुच जादुई उपहार है। लेकिन बच्चों कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन चिड़िया फिर आई और बोली, मोहन अब मैं तुम्हें दूसरी सीख देना चाहती हूँ। मोहन ने पूछा, कौन सी सीख? चिड़िया बोली, आज तुम इन फलों को अकेले नहीं खाओगे, इन्हें अपने दोस्तों, पड़ोसियों और ज़रूरतमंद लोगों में बांटोगे। मोहन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने चिड़िया की बात मान ली। उसने फल सब में बांट दिए। सब लोग बहुत खुश हुए और मोहन की खूब प्रशंसा करने लगे। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि दूसरों को खुशी देने में जो आनंद मिलता है, वह अकेले सब कुछ खा लेने में नहीं होता है। तो कुछ समय बाद सुनहरी चिड़िया आखिरी बार आई। मोहन बोला, तुमने मुझे पौधों की देखभाल करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया और बांटना भी सिखाया, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और जादुई उपहार है? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मोहन मैंने तुम्हें तीन सबसे बड़े खजाने दे दिए हैं, मेहनत, जिम्मेदारी और दूसरों की मदद करने की आदत। जिस बच्चे के पास ये तीनों चीज़ें हों, उसे किसी और जादू की ज़रूरत नहीं होती। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया आसमान में उड़ गई। मोहन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह बादलों के पीछे ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद वह कभी आलसी नहीं बना। वह समय पर काम करता, पौधों की देखभाल करता और हमेशा दूसरों की मदद करता। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? एकदम सही कहा आपने, अच्छी आदतें ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है और खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है। अब जब आपने इतनी अच्छी सीख ले ही ली है, तो उपहार में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां चल रही है और मुझे लगता है कि अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि खेल भी लिए, घूम भी लिए, अब नया क्या करें, है ना बच्चों? तो क्यों ना इस बार गर्मी की छुट्टियों में अपने अंदर छुपे हुए खोजी, कलाकार और वैज्ञानिक को बाहर निकाला जाए। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि दीदी बात तो सही कह रही है, लेकिन ये करें कैसे, है ना बच्चों? तो बहुत ही आसान है। क्या आपने कभी बादलों को ध्यान से देखा है? कभी वे हाथी जैसे लगते हैं, कभी खरगोश जैसे और कभी किसी बड़े जहाज जैसे। तो आपको क्या करना है, आप अपने दोस्तों के साथ बादलों में आकृतियां खोजो खेल खेल सकते हैं। उनको पूछो कि आपको बादलों में क्या आकृतियां मिलती है, इससे आपकी जो इमेजिनेशन पावर होगी ना वो बढ़ेगी। इसके साथ ही आप घर में रखी पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जैसे खाली डिब्बे से पेन स्टैंड बनाना, पुरानी बोतल से फूलदान या कार्डबोर्ड से कोई मॉडल बनाना।

और इसे हम देसी भाषा में कहते हैं जुगाड़ की कला। और एक और मज़ेदार काम है बच्चों, घर में खजाने की खोज करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा की मदद से सुराग बनाइए और फिर उन्हें खोजते हुए खजाने तक पहुंचिए। है ना मज़ेदार खेल। और हाँ, क्या आपने कभी अपने घर के सबसे बड़े सदस्य का इंटरव्यू लिया है? नहीं तो आज ही दादाजी, दादी जी, मम्मी या पापा से सवाल पूछिए और उनके जवाब रिकॉर्ड कीजिए। आपको बहुत मज़ेदार किस्से सुनने को मिलेंगे, उनके अनुभव होंगे, उससे भी आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। और बच्चों, अगर छत पर सोने का आपको मौका मिले तो रात को आसमान देखिए। चांद हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। कोशिश कीजिए कि एक सप्ताह तक उसका चित्र बनाकर देखें कि उसमें क्या क्या बदलाव आता है। है ना इंटरेस्टिंग। और आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ नो मोबाइल चैलेंज भी खेल सकते हैं। देखिए कौन सबसे ज़्यादा समय मोबाइल से दूर रह सकता है। तो ये तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। और बच्चों, सबसे मज़ेदार बात, एक दिन के लिए खुद को रेडियो उद्घोषक समझिए, घर के लोगों का इंटरव्यू लीजिए, उन्हें चुटकुले सुनाइए और अपना छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, छुट्टियां केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि अपनी कल्पना को उड़ान देने के लिए होती है। और आपको सुनवाते हैं एक प्यारी सी कविता। एक दिन सूरज ने पूछा हंसकर, इतना खुश कैसे रहते हो? मैं बोला, प्यारी मुस्कान हर गम को दूर भगाती है। वो मुस्कान कोई खिलौना नहीं जो मेले से ले आए हम, यह तो जादू की छड़ी है जिससे खुशियां फैलाएं हम। मम्मी हंस दे घर महके, दादी हंस दे मन खिल जाए, दोस्त अगर मुस्का दे तो सारा दिन अच्छा हो जाए। रोता चेहरा हंस पड़ता है जब मीठी सी मुस्कान मिले, जैसे सूखे बाग में आकर बारिश की पहली फुहार मिले। न पैसे लगते, न मेहनत, न कोई इसका मोल लगे, फिर भी दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान ही अनमोल लगे। तो आओ बच्चों, आज से हम एक छोटा सा काम करेंगे, जहां उदासी दिख जाएगी वहां मुस्कान का फूल धरेंगे। है ना बच्चों। तो हंसना है, हंसाना है, मुस्कान से आगे जग को महकाना है। और बच्चों, जो सवाल पूछते हैं ना, नई चीज़ें खोजते हैं और अपनी कल्पना का उपयोग करता है, उसकी हर छुट्टियां रोमांचक बन जाती है। तो आइए बच्चों, आज आप इनमें से कौन सा मज़ेदार काम करने वाले हैं अपनी दीदी को ज़रूर बताइएगा। और अब घड़ी की सुइयां हमें जाने का इशारा दे रही है, तो चलिए फिर मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी दीदी के साथ बोलिए जय हिंद।

बच्चों ने सुना अपना कार्यक्रम मुकुल। आज की प्रस्तुति मीनाक्षी स्वर्णकार की थी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज संध्या 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य एस्बेस्टन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सजीव प्रसारण संध्या 7 बजे से।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बज चुके हैं और अब समय है फिल्म संगीत का, और शुरुआत करते हैं राघव चैतन्य के स्वर में इस बेहतरीन गीत के साथ।

ये थे राघव चैतन्य, संगीत प्रीतम का था, लिखा था इसे मनोज मुंतशिर ने, फिल्म का नाम एनिमल। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिल्म पुष्पा 2 द रूल से सुनते हैं गीत जावेद अली और मधुबंती बागची के स्वर में। लिखा इसे रकीब आलम और सिजू थुरवूर ने, संगीत है देवी श्री प्रसाद का।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित

0: ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये।

0: ये थे अरिजीत सिंह, फिल्म का नाम कबीर सिंह।
1: मिस
2: सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: बन गया बजट?
1: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
9: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
8: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
9: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
8: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास, आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
9: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
8: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
9: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास, पहचान का और विस्तार का।
8: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
9: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, जिंदगी में हुनर हो, हौसला हो और अपने ऊपर भरोसा हो तो एक अलग ही टशन दिखाई देता है, जिस इसी जोश और आत्मविश्वास को सुरों में ढालता है हमारा अगला गीत फिल्म टशन का। सुनिए विशाल ददलानी, सलीम मर्चेंट को। फिल्म टशन का ये टाइटल सॉन्ग है, विशाल और शेखर का है संगीत, लिखा भी है इसे विशाल ददलानी ने।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म वीर जारा से ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है लेट मदन मोहन का। सुनते हैं ये हम आ गए हैं कहाँ।

ये हम आ गए हैं कहाँ और अब वहाँ जाने का और समय हो गया है, तो करते हैं खुदा हाफिज इस गीत के साथ। फिर भी युवा का ये गीत है, आवाज़ें हैं सुनीता श्रेथी और लकी अली की, साथ में है कार्तिक, संगीत ए आर रहमान का है और लिखा है इसे

फिल्म युवा के इस गीत के साथ ही खुदा हाफिज कहने का वक्त हो चला है। तो ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात

0: 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला का 13वां संस्करण सुनते हैं।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने। लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए, एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
2: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
3: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
2: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
3: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
2: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है?

0: उसने यहां तक उनको पहुंचाया है?
1: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
0: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना, उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
0: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था, आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको

0: अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए। मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4 बाई 6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में तो वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है।

0: भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उसने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हैं, यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए। और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ

0: करने लिए, बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेकर नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूं और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब के जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, 2 देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं

0: मूवी क्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
1: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
0: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थीं जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
1: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
0: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
1: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में

0: 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलेगा,
1: सकता, बिल्कुल।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से
0: देखिए,
1: देखते हैं?
0: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: अभी आप सुन रहे थे

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम के एपिसोड का 13वां हिस्सा। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 11:35 हुए, अब श्रोता सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

अभी आपने हिना फिल्म का गीत सुना, स्वर था लता मंगेशकर का। इस गीत को लिखा था नक्श लोयलपुरी ने, संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत को सुनना चाहते थे सुराणा मोहल्ला बीकानेर से कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अभाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन, प्रमोद दमाणी। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी चूनगोरा का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज नदीम, नदीम सादाब और एस जाकिर हुसैन बाव ने।

ആകാശവാണി എറ്റ് 90. प्रोग्राम का अगला गीत द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है. स्वर है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार का. आनंद बख्शी के लिए के इस गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने. इस गीत को सुनना चाहते हैं बल्ब गार्डन बीकानेर से एल सी सहजादा, कमला देवी पवार, लालचंद पवार और अरुणा रानी पवार. इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है पवनपुरी बीकानेर से भंवर लाल सोनगरा, गीता रानी, सीता रानी, मूलचंद सोनगरा, प्रथम राज, हंस राज, मनोहर लाल सोनगरा, मुकेश आकाश सोनगरा और मिस्त्री सीताराम पवार ने. तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर यह गीत.

प्रोग्राम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में है। गीत के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, संगीत रवि का है। फिल्म का नाम है वक्त। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोटगेट बीकानेर से ओंकार चंद सरपटा, संपत ताराचंद सरपटा, विशाल सनी सरपटा। इस गीत को सुनने के लिए मैं फरमाइश भेजी है जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही और गौरव शाही ने। तो लीजिए आप सुनिए अपनी।

प्रोग्राम का अगला गीत रजनीगंधा फिल्म से है, स्वर है मुकेश का। इस गीत को सुनना चाहते हैं बीकानेर से मुकेश श्योता, हरीश श्योता, पिंकी श्योता और राकेश श्योता। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, मोहम्मद रज्जाक पंजाबगीर, अब्दुल सत्तार, बेबी मुमताज, निसार अली खातून बेगम और जैतून बेगम ने।

रजनीगंधा फिल्म में मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है।

0: रोड पर चलते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करें और कार आदि चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ

0: द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मा।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें FM चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

दिन में 12:10 पर श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा महिला जगत। इसमें आज आप विश्व रक्तदाता दिवस स्वैच्छिक रक्तदान विषय पर चर्चा सुनेंगे। साथ ही परिवार के लिए बनाए डाइट चार्ट और गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ बिताए वक्त सहित HPV वैक्सीन और जागरूकता विषय पर भी बातचीत की जाएगी। इसमें आज आप शिक्षा और मानवाधिकार विषय पर वार्ता भी सुनेंगे। वार्ताकार होंगी श्रीमती आरती जुनेजा। हमारी इस सभा में आप फिल्म संगीत सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर और दिन में 12:40 पर।

युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 पर। इसमें आज आप आधुनिक डिजिटल युग में स्वस्थ वृद्धावस्था विषय पर आज की बात सुनेंगे। साथ ही विश्व रक्तदाता दिवस, कम्युनिकेशन स्किल रोजगार में सहयोगी, ओलंपिक खेल और अनुशासन में आत्मविश्वास विषय पर लघु जानकारी दी जाएगी। जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी शाम 6:40 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा।

भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्किंगम इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी वुमेन्स टीम 20 विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। यह प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

ये थी हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12:10 होने वाले हैं। अब श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा।

0: सभी बुधननन के प्रिया नंदवानी जो प्यार भरियो नमस्कार सिंधी कार्यक्रम में अवां जो स्वागत है साथियों अज महीने जो बो आर्तवार है और महीने के बे आर्तवार से अवां बुधंदा जालुन जो मनपसंद कार्यक्रम मुझो घर मुझो संसार मुझो घर मुझो संसार प्रोग्राम में अज अवां गाल बोल बुधंदा देश के विकास में जालुन जो योगदान तंखा सवाय बुधंदा गीत संगीत देश के विकास में जालुन जो योगदान इन विषय से गालबोल करण लाए अज असांजे स्टूडियो में नींद दिनी आहे गौरी देवी के जेके की फैशन डिजाइनर आन ए पुठियन 26 सालन खां सिलाई सेखारण जो कम करे रही आहे और घणनि जालुन के पंहिंजे पेरन ते बिहारे रही आहे अज असां उन्हनि सां उन्हनि जा अनुभव पुछंदासीं और जरूर ॿियूं घणेई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं असां उन्हनि खां पुछंदासीं जंहिंसां असांजे ॿुधंदड़नि खे ॿुधी करे प्रोत्साहन मिलंदो गौरी देवी तव्हांजो असांजे आकाशवाणी जे स्टूडियो में स्वागत आहे
1: नमस्कार
0: गौरी देवी जी जीअं की तव्हां फैशन डिज़ाइनर आहियो ऐं पुठियनि 26 सालनि खां सिलाईअ जो कमु नियाणियुनि खे छोकिरियुनि खे सेखारे रहिया आहियो ऐं उन्हनि खे ख़ुदि मुख़्तियार ठाहे रहिया आहियो ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल जो उनवान बि इहो ई आहे की देश जे विकास में जालुनि जो योगदान त सभु खां पहिरीं त मां तव्हां खां इहो ॼाणणु चाहींदसि की तव्हां असांखे पंहिंजे सफ़र जे बारे में ॿुधायो तव्हां 26 साल पहिरीं इहो सफ़र कीअं शुरू कयो ऐं तव्हांखे किथां प्रेरणा मिली की तव्हां हिन कम सां जुड़ो
1: मां हिकु फैशन डिज़ाइनर आहियां ऐं सिलाई प्रशिक्षक आहियां 26 वरियनि खां जालुनि ऐं नियाणियुनि खे फैशन डिजाइनिंग जो कोर्स सेखारे रही आहियां ऐं उन्हनि खे आत्मनिर्भर बणाइण जो कमु कंदी रही आहियां मां क़रीब 26 साल पहिरीं ॾाढे घटि साधननि सां हिन कम जी शुरूआति कई हुन वक़्तु महिलाउनि लाइ हुनुर सिखणु ॾाढा घटि साधन हूंदा हुआ मां 26 साल पहिरीं मां हिन कम सां जुड़ियल आहियां ऐं मूं इहो सोचियो बि कोन हो की मां इन लाइक़ु थी वेंदसि की राजस्थान जा सभिनि छोकिरियुनि खे मां सेखारे सघां थी मां ॾिठो की हिकु ग़रीब माइयूं हूंदियूं हुयूं उहे कचिरो ढोईंदियूं हुयूं त उन्हनि खे ॾिसी करे मूंखे कुझु थियो की मूंखे हिननि ज़ालुनि लाइ मूंखे कुझु करणो खपजे त मूं सोचियो की कुझु न कुझु असीं हिननि लाइ करे सघूं था त मूं हुननि खे घुरायो ऐं मूं हिकिड़े ॾींहुं उन्हनि खां पुछियो की बेटा तव्हां हीउ कचिरो छा लाइ बीड़ींदो आहियां तव्हां छा सिखी सघो थियूं हिकिड़ी नियाणीअ मूंखे चयो की मैडम मूंखे सिलाई सिखण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां हुननि सां प्रेरित थी मूं सोचियो की यदि मां सिखां त मां हिननि खे बि सेखारे सघां थी ऐं रियलिटी बि इहा ई हुई की मूंखे उन सां ई इहा प्रेरणा मिली की मूंखे कुझु हिननि लाइ कुझु करणो खपजे त मूं ख़ुदि पहिरीं सिलाई सिखी फैशन डिज़ाइनिंग जो कोर्स सिखियो ऐं उन खां पोइ अॼु मां इन लाइक़ु आहियां की मां सभिनि खे सेखारींदी आहियां ऐं सभई ॾाढा ई वधीक ख़ुशि थींदा आहिनि
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे की चवंदा आहिनि की असां कंहिंखां बि कुझु सिखी था सघूं ऐं हिकु ग़रीब नियाणीअ तव्हांखे मोटिवेट कयो की छो न तव्हां बि सिखो ऐं पोइ तव्हां उन्हनि सभिनि जो भलो कयो ऐं इन नमूने तव्हां हितां खां पंहिंजी शुरूआति कई ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे की सिखण जी खिड़की तव्हां बि खुली रखी त अॼु हेॾनि ॼणनि खे तव्हां सेखारे सघो था फैशन डिज़ाइनिंग जो कोर्स करण खां पोइ तव्हां जॾहिं हीअं छोकिरियुनि खे सभिनि खे सेखारींदा हुआ तंहिं वक़्त में तव्हांजे साम्हूं संसाधननि जी कहिड़ी कहिड़ी मुश्किलातूं साम्हूं आयूं उहे बि असांखे ॿुधायो
1: अॼु जे टाइम में छा आहे की सोशल मीडिया आहे यूट्यूब आहे हर शइ हूंदी आहे पर पहिरीं जे टाइम ते इहो कुझु बि कोन हूंदो हुओ ॾाढा ई साधन बि घटि हूंदा प्लस घर जा सदस्य जेके हूंदा आहिनि त उहे बि लेडीज़ुनि खे घर मां घटि कढंदा हुआ पर असांजो जेॾीमहिल हुननि कमु ॾिठो असांजी समाज में प्रतिष्ठा ॾिठी त हू बि पंहिंजी पंहिंजी लेडीज़ुनि खे मूं वटि मोकिलींदा हुआ ऐं अॼु हू जेॾीमहिल पंहिंजे कमाए करे पंहिंजे घर वारनि खे ॾींदियूं आहिनि त घर वारा बि ख़ुशि थींदा आहिनि
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे की असांजे ॻाल्हि ॿोल जो उनवान बि आहे की देश जे विकास में जालुनि जो योगदान त जालुनि जो योगदान हितां खां वठी शुरू थो थिए ऐं जॾहिं उहे पंहिंजे घर जी बागडोर बि थोरे में संभालीनि थियूं त ज़रूरु घर प्रगति थो करे त समाज बि थो करे देश भी तो करे तो गौरी देवी जी इहो त तव्हां असांखे ॿुधायो की तव्हां हिन फील्ड सां कीअं जुड़िया ऐं कीअं तव्हां छोकिरियुनि खे सिलाई जो कमु बि सेखारे रहिया आहियो
1: भई मुंहिंजो इहो चवणु आहे की हुनरमंद हथ कॾहिं बि ख़ाली न रहंदा आहिनि मुंहिंजो मक़सदु ई इहो आहे की मां जेतिरो बि वधीक लेडीज़ुनि खे असीं सेखारियूं ऐं उन्हनि खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारियूं त उहो असांजो मक़सदु

0: सफल थे।
1: त तव्हांजे हिसाब सां महिला सशक्तिकरण असां अखर ॿुधो आहे त उनजो छा मतिलबु हूंदो आहे उहो असांखे ॿुधायो।
0: उनजो मतिलबु ई इहो हूंदो आहे की हर महिला पंहिंजे पेरनि ते बीहे ताकी हू पंहिंजो घर बार हलाए सघे, पंहिंजे ॿारनि खे सुठी शिक्षा ॾेई सघे ऐं पंहिंजो आत्मनिर्भर ठही सघे।
1: बिल्कुलु, असांजे प्रधानमंत्री बि इहो ई चयो आहे की औरतुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी हुजणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं जॾहिं औरत ख़ुदि मुख़्तियार हूंदी आहे त हूअ घर खे संभालींदे पंहिंजा ॿाहिरि जा कम बि बखूबी निभाईंदी आहे। तव्हां जीअं छोकिरियुनि खे इहो कमु सेखारे रहियो आहियो त उन्हनि जी ज़िंदगीअ में बि घणेई बदिलाव तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलिया हूंदा ऐं हू बि तव्हांखे पंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदियूं हूंदियूं जेतिरो हेॾे लंबे अरसे खां हू तव्हां सां गॾु हूंदियूं आहिनि त हुननि जी ज़िंदगीअ में कहिड़ा बदिलाव ईंदा आहिनि ऐं हू कहिड़ी तरक़ी करे रहियूं आहिनि उहो बि असांखे ॿुधायो।
0: जीअं हिकु गुड़िया मूं सां ॻाल्हि कई हुई ऐं उन न्याणीअ मूंखे ॿुधायो की मूंखां उहा सिखी करे पंहिंजे नंढे भाउ खे हुन पढ़ाईअ लाइ फीस ॾिनी। अॼु हुन जो नंढो भाउ सरकारी नौकरी करे पियो त उन सां उन जा घर वारा बि ॾाढा ख़ुशि थिया आहिनि ऐं मूंखे बि गर्व महसूसु थिए थो की मूं जेको न्याणीअ खे सिलाई जो हुनुरु सेखारियो आहे त उन जी वजह सां उन जे भाउ खे अॼु सरकारी नौकरी मिली आहे। मूं वटि कई अहिड़ा ॿार बि ईंदा आहिनि जेके ॾाढा जॻहियुनि तां सिखी आया आहिनि, पंज पंज भेरा सिखी आया आहिनि पर सिखी न सघंदा आहिनि, पर मूं वटि अची करे उहे एॾा ख़ुशि थींदा आहिनि की मैडम तव्हांजे सेखारण जो तरीक़ो ॾाढो ही सुठो आहे ऐं हू ॾाढे ईज़ी वे में सिखी वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीहंदा आहिनि। ऐं कई मायूं त अहिड़ियूं आहिनि जेके मूंखे 20 सालनि खां पोइ गॾिजंदियूं आहिनि छोकिरियूं ऐं मां न उन्हनि खे सुञाणे सघंदी आहियां पर हू मूंखे सुञाणे छॾींदियूं आहिनि की मैडम तव्हांखां असां सिखियासीं। त मूंखे ओॾी महिल ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की ही ॿार असांजे सेखारियल अॼु मूंखे यादि करे रहियो आहे। तंहिंखां सवाइ काफ़ी अहिड़ियूं लेडीज़ूं आहिनि जिन पंहिंजा बुटीक खोलिया आहिनि ऐं ॿियनि खे सेखारीनि पियूं ऐं आत्मनिर्भर ठही वियूं।
1: बिल्कुलु सुठो आहे, ट्रेनिंग ॾियण जो कमु त उहो हूंदो आहे न की पंहिंजे पाण ताईं सीमित न रखूं, असां अॻिते खां अॻिते वधायूं ऐं ज़रूरु उहे छोकिरियूं जॾहिं तव्हांखां सिखनि थियूं त अॻियां पंहिंजे परिवार खे हलाइण लाइ ख़ुदि बि उहो इंस्टीट्यूट खोले थियूं सघनि ऐं अॻिते अॻिते पंहिंजे हिन हुनर खे वधाए थियूं सघनि। गौरी जी, असां तव्हांखां इहो बि ॼाणणु चाहींदासीं की जॾहिं तव्हां उन्हनि महिलाउनि खे शुरूआति में त असांखे कंहिंखे ख़बर न हूंदो आहे की पाण ई कमु कयूं था त तव्हां उन्हनि महिलाउनि ताईं पंहिंजी पहुच कीअं बणाई ऐं छा हू ट्रेनिंग वठणु जॾहिं ईंदियूं हुयूं त उन्हनि में को डपु हूंदो हो या उन्हनि जे डप खे तव्हां कीअं दूरि कयो इन जे बारे में बि असांखे ॿुधायो।
0: भई उन्हनि जे डप खे असां छा आहे की हर जॻह जागरूकता अभियान हलायो हो ऐं उन्हनि में इहो डपु हूंदो की के घर वारा सोचींदा की भई हिननि वटि मर्दनि जो कमु कोन हूंदो आहे, जबकी असां उन्हनि खे सम्झाईंदा आहियूं की ही ओनली लेडीज़ जो ई फील्ड आहे। इन में तव्हांखे ॾियण वारा बि लेडीज़ ईंदी त वठण वारी बि लेडीज़ ईंदी ऐं प्लस हू जेॾी महिल कमाईंदियूं आहिनि त हुननि खे हिकिड़ी ख़ुशी थींदी आहे की हा भई असांजो लेडीज़ जो ई फील्ड आहे त घर वारा बि ॾाढा इन ॻाल्हि लाइ ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि।
1: त चवण जो मतिलबु की जागरूकता अभियान तव्हां हलाए करे पाण उन्हनि ताईं पहुता ऐं उन्हनि खे घर मां तव्हां कढियो ऐं उन्हनि जे डप खे दूरि करे उन्हनि खे सेखारियो। हिन कम में जाम महिनत लॻंदी आहे, ही ॿुधण में ईअं सवलो थो लॻे पर जॾहिं पाण हिन खे कंदा आहियूं त ॾाढो वक़्त बि लॻंदो आहे ऐं दम बि लॻंदो आहे।
0: जी, मूं वटि कई अहिड़ा स्टूडेंट बि ईंदा आहिनि जिन खे मतिलबु पढ़ियल लिखियल न हूंदा आहिनि ऐं उहे चवंदा आहिनि की मैम असीं कीअं सिखंदासीं, त मां हुननि खे हिमत ॾींदी आहियां, चवंदी आहियां न मूंखे सिर्फ़ु 1 खां 10 तक ई गिनती खपे ऐं उहे ॿार अॼु सिखी करे पंहिंजे पेरनि ते जेॾी महिल बीहंदा आहिनि न त उहे ॾाढा वधीक ख़ुशि थींदा आहिनि की असांखे मतिलबु पढ़ाई न अचण खां बावजूद बि असां ही हुनुरु सिखियोसीं।
1: बिल्कुलु सही तव्हां चओ था की तव्हां उन्हनि खे पढ़ाई न हुजण जे बावजूद बि उहे इहो हुनुरु सिखी करे पंहिंजे घर गृहस्थीअ में कुझु आमदनी करे सघनि थियूं त हीअ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। जेके बि सिखण वारी छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि त उन में घणो करे कहिड़े तबिके जी महिलाऊं वधीक हूंदियूं आहिनि?
0: मूं वटि हर उमिरि जो, छो जो हिन हुनर में कंहिं बि एज कोई बि बाधा कोन विझंदी आहे, छो जो कई मायूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके पहिरीं पंहिंजा ॿार वॾा कंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजी इच्छाऊं पूरियूं न करे सघंदियूं।
1: बिल्कुलु,
0: ऐं अॼु मूं वटि हर उमिरि जी, यानी की एट प्रेज़ेंट बि मूं वटि 49 ईयर्स ओल्ड जी लेडीज़ अचे पई ऐं उहा मूं वटां सिखे पई ऐं काफ़ी अहिड़ी लेडीज़ूं आहिनि जेके नंढी 15 साले खां वठी करे उहा 50 साले तक 60 साले तक जी मायूं सभु तरह जी मायूं मूं वटि ईंदियूं आहिनि ऐं उहे मूं वटां सिखी

0: करे पंहिंजा घर हलाईंदियूं आहिनि।
1: सुठो तव्हां ॿुधायो कि उमिरि जी कोई बाधा कोन हूंदी आहे, कंहिं बि उमिरि में को बि हुनर सिखी थो सघिजे, ऐं तव्हां वटि त ख़ुदि लाइव अहिड़ियूं ज़ालूं आहिनि जेके वॾी उमिरि में बि सिखनि पियूं। ऐं हिकिड़ो सिखण जो जज़्बो हुजणु खपे कि हा मूंखे इहो कमु करिणो आहे, पोइ भले पंहिंजे ॿारनि जी ज़िमेदारियुनि खां घर परिवार जी ज़िमेदारियूं पूरियूं थी वञनि, उन खां पोइ बि हीउ कमु करे सघंदियूं आहिनि ऐं उहे कनि बि पियूं तव्हां सां गॾु।
0: कुझु अहिड़ियूं माइयूं बि आहिनि जेके झाड़ू पोछा लॻाईंदियूं आहिनि वीचारियूं,
1: अच्छा, पर
0: उहे बि मूं वटि ईंदियूं आहिनि ऐं उहे सिखी करे उन्हनि अॼु झाड़ू पोछा लॻाइणु छॾे ॾिनो आहे ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीठियूं आहिनि।
1: त बिल्कुलु इहो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कि असां उन्हनि खे हू किनो कमु करण खां बचायोसीं। त इहो जॾहिं तव्हां ॾिसंदा आहियो कि तव्हांजी सेखारियल छोकिरियूं आहिनि, नियाणियूं आहिनि, उहे किनो कमु छॾे करे ऐं हिन सुठे कम जी तरफ़ पंहिंजो रुझान रखी रहियूं आहिनि, त तव्हांखे जाम ख़ुशी थींदी हूंदी। उन ख़ुशी जो बयानु तव्हां कीअं कंदा?
0: भई मां ईअं ई चाहींदसि कि हुनर जी चाबी सफलता जो दरवाजो खोलींदी आहे।
1: हा,
0: ऐं हुननि बाक़ाइदा इहो ई कयो आहे, हुनर सिखी करे अॼु हुननि पंहिंजा ख़राबु कमु करणु छॾे ॾिना आहिनि ऐं सुठा कमु कंदियूं आहिनि पंखे जी हवा में। मतिलबु मां त कई परिवारनि जी मतिलबु फैमिली टीचर्स बि आहियां।
1: अच्छा,
0: काफ़ी अहिड़ा परिवार आहिनि जंहिंजी मां फैमिली टीचर्स आहियां। उन्हनि छा आहे कि हिकु भेण सिखी वई त उन ॾिसी करे ॿी भेण बि इहो ई रस्तो चूज़ कयो, ऐं किन छोकिरियूं जेके हिकु हिकु नंबर सां एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम ॾींदियूं आहिनि उहे बि रहिजी वेंदियूं आहिनि, केॾी महिल इंटरव्यू में रहिजी वेंदियूं आहिनि, त उहे बि मूं वटां सिखी करे ऐं पंहिंजो लख ॾेढ लख रुपया कमाईंदियूं आहिनि पर मंथ जा।
1: इहा त तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे कि हेतिरो सुठो मुक़ाम उन्हनि हासिलु कयो आहे। त तव्हां छा गवर्नमेंट जा एग्ज़ाम बि तव्हांजे इंस्टीट्यूट जे मार्फत थींदा आहिनि?
0: जी, मां सेंट्रल गवर्नमेंट जी खादीग्राम उद्योग संस्था आहे उने में मां जुड़ियल आहियां ऐं मां ॿारनि खे उनजी शिक्षा बि ॾींदी आहियां। प्लस हिकिड़ो भारतीय समाज कल्याण विभाग आहे, उन में असीं बिल्कुलु ग़रीब ॿार जेके अफोर्ड न करे सघंदा आहिनि असां उन्हनि खे सेखारींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारींदा
1: आहियूं। ॾिसो गौरी देवी जी, ही त थियो कि पाण उन्हनि खे कीअं घर मां कढियो, ऐं हिकिड़ी ज़ाल हुअण जे नाले पाण वटि वक़्त जी बि कमी हूंदी आहे ऐं टाइम मैनेजमेंट जंहिंखे चइबो आहे उहो करे असां सभिनि खे हलणो पवंदो आहे। त ही सभु करण लाइ तव्हांखे बि पंहिंजे घर जी ज़िमेदारियूं बि हूंदियूं आहिनि, त तव्हांखे वक़्तु कीअं मिलंदो आहे ऐं तव्हां उन्हनि जे वक़्त जे मुताबिक़ इहो वक़्तु सेखारण जो कीअं कढंदा आहियो इहो असांखे ॿुधायो।
0: जी, इहा ॻाल्हि तव्हां बिल्कुलु सही चई कि मां बि हिकु गृहिणी आहियां ऐं मूंखे बि उन्हनि ॿारनि लाइ, पर मूंखे शौक़ु आहे कि मां ॿारनि खे सेखारे सघां थी ऐं सुठो सेखारे सघां थी ऐं इन शौक़ जे कारण ई मां बि मुंहिंजे घर जा कम जल्दी जल्दी कंदी आहियां। प्लस जेके ज़ालूं आहिनि जेके सिखणु चाहिनि थियूं उन्हनि लाइ मां नंढा नंढा बैच ठाहे रखिया आहिनि, ताकी नंढे में नंढे बैच में हू ईंदियूं, हू पंहिंजा घर जा कम बि करे सघनि थियूं ऐं नंढे नंढे बैचनि में सिखी बि सघनि थियूं, त उन्हनि सां हुननि खे बि सहुलियत थी ऐं हू सिखी करे पंहिंजे पेरनि ते बीहनि थियूं।
1: गौरी जी, असांखे इहो बि ॿुधायो कि घणी दफ़ा अहिड़ी बि स्थिति ईंदी हूंदी, हेतिरे वक़्त खां तव्हां हिन फील्ड में जुड़ियल आहियो, का नियाणी हूंदी आहे उहा सिखंदे सिखंदे अचानक चवंदी आहे कि हाणे मूंखे छॾिणो आहे कंहिं कारणवश, त ओॾीमहिल तव्हांजो छा योगदान थींदो आहे उन जे लाइ ऐं उन जे घर परिवार वारनि खे तव्हां कीअं सम्झाईंदा आहियो कि हीउ कमु सिखणु पूरी तरह सां ज़रूरी आहे?
0: जी, इहो ज़रूरी आहे। मां कई ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिं वटि पैसा न हूंदा
1: आहिनि,
0: अधु टाइम हू फीस ॾेई सघंदा आहिनि पर अधु टाइम खां पोइ हू न ॾेई सघंदा आहिनि के कारण सां, त मां हुननि खे सम्झाईंदी आहियां कि हीउ हुनर अहिड़ो हुनर आहे जेको तव्हांखे ज़िंदगी भर कमु ईंदो, छो जो पाण खे कपिड़ो ज़िंदगी भर पाइणो हूंदो आहे। इन लाइ असीं हीउ प्रधानमंत्री जी बि चवंदा आहिनि कि स्किल ऐं शिक्षा ॿई ज़रूरी आहिनि, त मुंहिंजो बि इहो मञणु आहे कि मां हुननि खे स्किल सेखारियां। शिक्षा त हू वठी चुकियूं हूंदियूं आहिनि पर उन खां पोइ मुंहिंजो इहो मञणु हूंदो आहे कि मां उन्हनि खे सुठी में सुठो हुनर सेखारियां ऐं स्किल सेखारे करे उन्हनि खे पंहिंजे ज़िंदगी में अॻियां वधण लाइ प्रेरित करियां, त हुननि जे घर वारनि सां मां ख़ुदि मिलंदी आहियां ऐं उन्हनि घर वारनि जी मां पेरेंट्स मीटिंग बि वठंदी
1: आहियां
0: ऐं उन्हनि खे मां घुराईंदी आहियां, घर घुराए करे उन्हनि खे सम्झाईंदी आहियां ही यदि असांजो ही हुनर सिखी वई त हू 100% पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे थी।
1: बिल्कुलु सही तव्हां चयो, हुनर ते तव्हां फोकस कयो आहे कि हुनर हुजे त माण्हू सफलता जी सीढ़ियूं चढ़ंदो आहे, ऐं चवंदा बि आहिनि कि वक़्तु पुछी कोन ईंदो आहे, वक़्त में उतार चढ़ाव ईंदा रहंदा आहिनि, पर जॾहिं हुनर हथ

0: में हूंदो आहे न त असां वरी उथी खड़ा थींदा आहियूं ऐं वरी पंहिंजी आजीविका खे सुठे नमूने हलाए सघंदा आहियूं ऐं इहो बि चवंदा आहिनि न कि हुनरमंद हथ कॾहिं खाली न रहंदा आहिनि। सची ॻाल्हि आहे कि हुनरमंद हथ कॾहिं खाली न रहंदा आहिनि। त ही हुनर सेखारण जो कमु तव्हां ॾाढो सुठो करे रहिया आहियो। पहिरीं हिन हुनर खे तव्हां सिखियो ऐं पोइ हाणे हुनखे अॻिते खां अॻिते वधाए रहिया आहियो। गौरी जी, असांखे इहो बि ॿुधायो कि जॾहिं तव्हां हेतिरनि ॼणनि खे ट्रेनिंग ॾिनी आहे त छा उन्हनि तव्हांखे कॾहिं रिपोर्ट ॾिनी आहे कि असां कुझु करे रहिया आहियूं ऐं घणियूं ज़ालूं इन कम खे अञा अॻिते वधाए रहियूं आहिनि? कोई इन जी काउंटिंग आहे?
1: जी हा, मां 6000 ज़ालुनि खे मां सेखारे रही आहियां ऐं अॻियां हू अॻियां सेखारीनि बि पियूं ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जेॾी महिल हू चवंदियूं आहिनि कि मैडम असां रोज़गार पाइण लाइक़ु थी आहियूं ऐं असां ख़ुदि जो स्वरोज़गार बि चालू कयो आहे, त मूंखे बि ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। काफ़ी ॿारनि पंहिंजा बुटीक बि खोलिया आहिनि ऐं बुटीक खोले करे पंहिंजे अंडर में ॿियनि खे बि रोज़गार ॾेई रहियूं आहिनि।
0: त हिक जे सिखण सां असांखे ॿियनि खे बि रोज़गार मिले थो ऐं केतिरो इन कम जो फैलावो थिए थो ऐं जॾहिं ई कमु फैलजंदो आहे तॾहिं ई त देश जो विकास थींदो आहे ऐं असां इहो सम्झी था सघूं कि ही हुनर घणो करे ज़ालूं ई अपनाईंदियूं आहिनि ऐं ज़ालूं ई हिनखे अॻिते वधाईंदियूं आहिनि। गौरी जी, असां इहो बि त चई था सघूं न कि जॾहिं ज़ाल बि कमाईंदी आहे ऐं गाॾी जा पहिया ॿई जॾहिं कमाईंदा आहिनि त ॿारनि जी परवरिश ते बि त ॾाढो सुठो फ़र्क़ु पवंदो आहे। त अहिड़ा बि कुझु तव्हांजा स्टूडेंट्स आहिनि जंहिं ईअं कयो आहे ऐं उन्हनि जो परिवार सुठे नमूने, उन्हनि जा ॿार सुठे स्कूलनि में पढ़ंदा आहिनि, इन जे बारे में तव्हांजो छा चवणु आहे?
1: जी हाँ, मूं वटि सिखी करे कई अहिड़ी छोकिरियूं आहिनि। हिकु त वीचारी जो ॿार लाइ खीर पीअण लाइ बि हुन वटि कोन हो, पर हुनर सिखी करे अॼु हुन जा ॿार RS जी तयारी पिया कनि।
0: त जॾहिं तव्हां ही सभु कमु कंदा आहियो त तव्हांखे समाज में या असां चवंदा आहियूं की पंचायतुनि में कहिड़ी मान्यता मिली आहे उहो असांखे ॿुधायो।
1: जी, कई जॻह तां मूंखे इनाम बि मिलियल आहिनि ऐं रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार बि मूंखे मिलियल आहे।
0: गौरी जी, असां इहो बि तव्हांखां ॼाणण चाहींदासीं कि तव्हां अॼु पंहिंजे ॿुधंदड़नि खे आर्थिक तौर ते आत्मनिर्भर थियण लाइ तव्हां छा सलाह ॾींदा?
1: मां इहे ई सलाह ॾींदसि कि हर नियाणीअ खे, हर ज़ाल खे नओ हुनर सिखणो खपजे, वधीक मां वधीक महिनत करणी खपजे ताकी उहा सफलता प्राप्त करे सघे।
0: तमामु सुठी जानकारी गौरी जी तव्हां असांजे ॿुधंदड़नि खे ॾिनी ऐं हलंदे हलंदे असांजे ॿुधंदड़नि खे तव्हां छा संदेश ॾियणु चाहींदा?
1: मां बसि इहो ई संदेश ॾियणु चाहींदसि कि ज्ञान, हुनर ऐं हिमत ही नारीअ जा टे रत्न थींदा आहिनि ऐं उन नारीअ खे पंहिंजे हथ में रखणा खपजनि।
0: सुठो संदेश तव्हां असांखे ॾिनो कि ज्ञान, हुनर ऐं हिमत ही नारीअ जा टे रत्न थींदा आहिनि ऐं मां बि इहो ई चवंदसि कि मां को पखी न आहियां कि केर मूंखे पंहिंजे जाप्ते में फासाए, मां त ख़ुदि मुख़्तियार इच्छा शक्तिअ वारी हिकु आज़ाद इंसान आहियां। गौरी जी, तव्हां असांजे स्टूडियो में आया ऐं तमामु सुठे नमूने हिन विषय ते तव्हां असांखे जानकारी ॾिनी ऐं पंहिंजा अनुभव असांजे ॿुधंदड़नि सां साझा कया, जंहिंसां असांजे ॿुधंदड़नि खे हिकिड़ी प्रेरणा मिली कि कमु कहिड़ो बि हुजे असां ख़ुदि बि सिखूं ऐं ॿियनि खे बि सेखारियूं। तव्हां हिते आया, तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद। देश जे विकास में ज़ालुनि जो योगदान, हींअर अवां गौरी देवी सां कयल ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया हुआ। कार्यक्रम हली रहियो आहे मुंहिंजो घर मुंहिंजो संसार, ऐं साथियो कार्यक्रम में हाणे असां तव्हांखे अॼु जे ख़ासि ॾींहं जे बारे में ॼाण ॾियूं त अॼु आहे 14 जून ऐं 14 जून जो ॾींहुं असां हर साल आलमी रत दाता ॾींदड़ ॾींहं जे रूप में मल्हाईंदा आहियूं ऐं इहो आलमी सतह ते मल्हायो वेंदो आहे। हर साल हिन खे मल्हाइण जो मौज़ू अलॻि अलॻि हूंदो आहे, माना त थीम अलॻि अलॻि हूंदी आहे। हिन साल जो मौज़ू आहे इंसानियत जो हिकु फुड़ो रत ॾियो, ज़िंदगियूं बचायो। हीअ मुहिम रत जे दातार खे हिकु सादी क्लिनिकल तरीक़े सां अॻिते वधाए थी। हुन खे रहम, एकता ऐं इज़त माई ज़िमेवारी जे हिकु गहरे अमल जे तौर ते उजागर करे थी।
2: मालिक ॾिए त शुक्र कर, न ॾिए त सब्र कर। यार, पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिननि ॿिनि ॻाल्हियुनि ते अमल कर। अहिड़ी शहाणी लासानी सिंधी।

0: वामा जी लाए सिंधी प्रोग्राम आर्तवार मंगल ए विस्पत जे डी आकाशवाणी जयपुर अजमेर जे आमेर चैनल ता बुधना रहो सिंधी प्रोग्राम
1: साथियों सा गाल बोल भी बुद्धी सी असा आज जी खास दी जे बारे में भी बुद्धो सी ए हां अचो तो बुदू गीत संगीत में अचो सबखा पहरी सा बुद्धू ता काजल केवल रमानी जे आवाज में गाथल ही गीत।

साथियों हींअर अवां काजल केवल रमानीअ जे आवाज़ में ॻातल गीत ॿुधी रहिया हुआ ऐं हिन गीत खे ॿुधण खां पोइ अचो त ॿुधूं कमला केसवाणी ऐं गुरदास मल जे आवाज़ में ॻातल हीउ गीत।

कमला केसवाणी ऐं गुरदास मल जे आवाज़ में ॻातल हिन गीत सां गॾु ही अॼु जो असांजो मुंहिंजो घर मुंहिंजो संसार कार्यक्रम इते ही पूरो थो थिए। वरी खणी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ मंगल ॾींहुं हिकिड़ो ॿियो नओं सिंधी प्रोग्राम ईअं ई ॾींहं जो 12:10 ते। तेसीं ताईं प्रिया नंदवानी खे ॾींदा मोकल नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:40 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

आपने एक खूबसूरत नगमा सुना। स्वर था आशा भोंसले का, फिल्म का नाम इजाजत। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। लीजिए सुनिए अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की आवाज में एक दूसरे के लिए फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

गजल फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के एक बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण

0: रोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान का आह्वान किया है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद एंट्री दी गई। परीक्षा में कुल 1,26,600 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में एक क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया। वहीं संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर के मदद से की गई। जालौर जिले के एलाना गांव के पास बिशनगढ़ सायला रोड पर आज एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जालौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दौसा के आगरा बाईपास कट पर आज तड़के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जयपुर आ रही रोडवेज आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक निजी बस के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुई। हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों को भरतपुर और अन्य स्थानों पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस में सवार ये सभी लोग भरतपुर के रहने वाले थे और सौरोंजी जा रहे थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के मानसरोवर में एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की है, जबकि 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल मौके पर ही नष्ट करवाया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों में कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। प्रस्तुत करता है सुरभि बोहरा और डॉक्टर स्वर्ण रेखा।

0: जी हाँ बहनों, ये आवाज़ ही तो हमारी पहचान है। आप हमेशा दोपहर को इंतजार करते हैं अपने किचन के व्यस्त समय से भी। पसीना पसीन होते हुए वो जो बूंदें माथे से लेकर होठों तक उतर आती हैं, और आप आते हैं रेडियो सेट तक सुनने के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम। तो जी हाँ, आज के आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपकी अपनी रेडियो सखी डॉक्टर स्वर्ण रेखा
1: और सुरभि बोहरा
0: का स्वीकार कीजिए
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: सर भी, तुम्हारी आवाज वास्तव में बहुत अच्छी है।
1: अच्छा?
0: ये आवाज ही तो पहचान है।
1: हाँ।
0: और जहाँ तक हमारी रेडियो सखियां जो हमें सुन रही हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि सुरभि ने शिक्षा ली है संगीत की, और इनके पहले शिक्षक इनके पिता हैं। तो एक गर्व की बात है कि एक पुत्री का सम्मान, एक बेटी का आदर पिता के स्वर में होता है। और स्वर में क्यों ना हो सुरभि, क्योंकि वो हमारे साथ में चलता है,
1: चलता रहता है।
0: और जीवन का दूसरा नाम है जिंदगी को चला के रखना
1: और जिंदगी जीने की कला। ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम अपने जीवन में कितनी परेशानियां आए, कितनी कठिनाइयां आए, लेकिन अपने जीवन को हम जी रहे हैं और किस तरीके से जिंदा दिली से जी रहे हैं, या हम अपने कुछ विचार जो है मन के अंदर घुट के जी रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी है, खुल के जियो और जिंदा दिली से जियो, है ना स्वयं?
0: बिल्कुल सही कहा सुरभि। और जिंदा दिली से जीते हैं और संगीत के साथ में जीते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में खूबसूरती आवाज की पहचान है। और जैसे अभी आपने खूबसूरत आवाज में अपनी पहचान को सुना, इस पहचान को आगे हम लेकर चलेंगे, लेकिन शायद आपके नूरे चश्मे यानी नूरे से चेहरे के लिए एक पसंदीदा सा सॉन्ग, एक गीत जिसमें शायद मोहम्मद रफी साहब कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं।

0: जी हाँ बहनों, मोहब्बत जमा रहती है हमारे अपनों के साथ, और अपने स्वस्थ होना सुरभि तो उनके साथ में जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है।
1: बिल्कुल स्वयं।
0: और तुम्हें पता ही है कि आज कौन सा दिवस है?
1: आज है विश्व रक्तदाता दिवस। और बहनों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी स्वर्ण भी आज रक्तदान करने के लिए जा रही है, और ये इनका पहला या दूसरी बार नहीं, 37वां रक्तदान होगा।
0: ये जब से ये हम बात करते हैं कि रक्त एक बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के जीवन को बचाने के लिए, तो एक वॉलंटियर बनने के लिए सोचा था कि हमें रक्तदान करना चाहिए, और आज ये हमें मौका भी मिला है अपनी सखियों से रूबरू होके ये बात करने का कि रक्तदाता का अपना एक महत्व होता है। वो अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करता है, उस पर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता। और ये रक्तदान भी क्यों जरूरी है? ताकि हम इसे जागरूक करें लोगों को, एक स्वार्थ के भावना से रहित होकर हम स्वेच्छा से लोगों को जो जीवन दान देने का एक जो मुहिम है उसमें एक छोटा सा कतरा बन के अपनी एक आहुति दे।
1: स्वर्ण प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता
0: है। सही।
1: इसका उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करना। ये दिन उन लोगों को धन्यवाद देने का अवसर है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं और अनेक लोगों के जीवन को बचाते हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ ही जैसे दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, ऑपरेशन है, प्रसव है, थैलेसीमिया है, और कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज जो होते हैं उनको रक्त की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। वैसे तो कई तरीके की दवाएं हैं जिनसे हमें रक्त की कमी महसूस नहीं हो, लेकिन अगर किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में रक्तदाता जो है वो उनका
0: रक्त देता है।
1: हाँ, और वो उनके जीवनदाता बन जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान सुरक्षित होता है और कुछ ही समय में रक्त में जो कमी जो है वो उसकी पूरी हो जाती है। तो विश्व रक्तदाता दिवस हमें ये संदेश देता है कि यदि हम स्वस्थ हैं और अपनी पात्रता को, मानदंडों को पूरा करते हैं तो नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान हमें अवश्य रूप से करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और जब हमें ये पता है कि हमारे इस रक्तदाता के लिए कौन ऐसे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण नाम लिखा गया, वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त के बारे में बताया था और 1901 में एबीओ रक्त समूह के बारे में लोगों को इसकी जानकारी दी, और साथ ही ने चिकित्सा का नोबल मिला था। विश्व संगठन जो है, जो हमारे स्वास्थ्य की जांच करता है, जिसे WHO कहते हैं, इसने 2004 में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की थी और स्थापित किया था कि एक रक्तदाता का भी दिवस होना चाहिए। भारत में जो अपना स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वैश्विक स्तर की बात करें तो आज जब हम बहनों से मुखातिब हैं आज के कार्यक्रम में, यानी कि जो ये महीना चल रहा है, इसमें हमने ये बहुत बार देखा है कि हमारे डोनर्स कहाँ कहाँ से हमें कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और हम इसे ई रक्त कोश के द्वारा भी पोर्टल्स पे संचालित कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पहल है सुरभि, कि हम हमारे जितने भी मरीज हैं या भाई हैं जिनको ज़रूरत है रक्त की, उनके लिए हम नज़दीकी ब्लड बैंक तक कनेक्टेड हैं।
1: बिल्कुल बहनों, साथ ही हमें अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों को भी पूरी तरीके से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बहनों, समय हो चला है आपको गीत संगीत की दुनिया में लेकर चलने का। सुनेंगे ये गीत।

0: बड़ी
1: खुल गई चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
0: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
1: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु आवश्यकताएं अलग अलग होती है, इसलिए उनके लिए उचित डाइट चार्ट बनाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक समय में हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके का खाना पसंद होता है, तो उसके लिए अपन एक डाइट चार्ट बना सकते हैं। एक अच्छा डाइट चार्ट शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो डाइट चार्ट कैसे बनाते हैं ये हमें बताएंगे डॉक्टर स्वर्ण।
3: ये जरूरी है कि हमारे शरीर के लिए सब चीजें पोषकता में एक बैलेंस होना चाहिए। इसे हम चार भागों में बांटते हैं सुरभि। पहला ये है कि आधा हिस्सा सब्जियों का और फलों का, एक चौथाई हिस्सा साबुत अनाज का जिसमें रोटी दलिया आती है, एक चौथाई प्रोटीन जिसमें दाल पनीर दही या अन्य सामग्री, और साथ में चीनी और तेल का उपयोग जो होता है ना उसे ज्यादा नहीं कम करना होता है। और इसमें सुबह उठते ही जैसे हम विकल्प ले सकते हैं कि गुनगुना जो ग्लास है वो पानी का लें, जिसमें आप नींबू शहद ले सकते हैं। जिनको नींबू शहद एलर्जी करता है तो वो सीधा गुनगुना पानी भी दालचीनी के चुटकी भर डालने में ले सकती हैं। और जो थोड़े से फैटी हैं, जिनको ओबिसिटी है, तो वो सौंफ, अजवाइन और जीरे का एक कॉम्बिनेशन तैयार किए, आधा आधा चम्मच का भिगो के रात को छोड़ दीजिए, उसको पानी को सुबह पी सकती हैं खाली पेट।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने बताया स्वर्ण, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी तरीके से
3: करता है।
2: हाँ, शरीर जो डिटॉक्स करता है, जो गंदगी जो है शरीर की वो उससे बाहर निकल जाती है।
3: और अब कुछ खिलाना है तो खिलाएंगे क्या क्या?
2: बिल्कुल, और ऐसे भोजन में संतुलन बना रहता है जो डाइट चार्ट को फॉलो करके हम बना रहे हैं, तथा शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में मिलता रहता है। नियमित और पौष्टिक भोजन करने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। और गृहिणियों, जितनी भी हमारी बहनें हैं, हम किचन में जाते ही इसीलिए हैं कि अपने बच्चों को हम एक संतुलित आहार दे सके जो उनकी पसंद का हो, और ऐसा भोजन हो जो उनके शरीर और उनका जो मानसिक विकास है दोनों में साथ प्रदान कर सके।
3: बिल्कुल सही कहा सुरभि। और जैसे कि सुबह का नाश्ता अब लेना है तो उसे 8:30 से 9 बजे के बीच में लें, जिसमें आप ओट्स ले सकते हैं, गेहूं का धनिया दलिया जिसमें सब्जियां डाल के ले सकते हैं, एक ग्लास दूध पी सकते हैं, और जिनको दही पसंद है वो दही ले सकते हैं। इनके और भी विकल्प हैं, जैसे आप 2 बेसन के चीले या परांठे ये भी बना सकते हैं, दही ले सकते हैं। उसके अलावा पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं जिसमें खूब सारी सब्जियां डालें। और जिनको ग्रीन टी पीने की आदत है, और हमको तो जैसे चाय की आदत है ही, तो आप अपनी चाय ले सकते हैं।

0: या दूध ले सकती हैं। ऐसी मिड मॉर्निंग में जब आ जाता है भोजन को, जब दोपहर का समय है, तो उसमें भी तो कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी है।
1: वो जैसे हम ले सकते हैं हरी सब्जियां है, सलाद है, दही है, जैसे आप बता रहे हैं कि दही जो पनीर है, तो इसमें क्या होता है कैल्शियम की मात्रा पूरी पूरी हमारे शरीर को मिलती रहती है, तो हमारा शरीर इससे क्या मजबूत बना रहता है। और साथ ही हमें अपने आप को कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। आप इसके लिए अपनी जेब में कुछ सूखे मेवों को रख सकते हैं जो आपके समय पर आपको जो है वो पोषण प्रदान कर सके। आपको एनर्जी की जरूरत अगर पड़ रही है तो पानी की बोतल रखने का तो हमारे पास विकल्प है ही है, लेकिन साथ में हम अपन जैसे वो कुछ सूखे
0: मेवों के साथ में, या आप नींबू पानी बना के रख सकते हैं, या कुछ जूस रख सकते हैं, ताकि आपके शरीर में कुछ ना कुछ लिक्विड जाता रहे।
1: साथ ही बहनों रात का भोजन जो होता है वो हल्का होना चाहिए, क्योंकि कहावत में भी कहा गया है कि रात का खाना जो होता है वो हमें फकीरों की तरह खाना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और दिन का खाना जो हमें बिल्कुल अपने राजाओं की तरह खाना चाहिए। तो ये पुरानी बातें जो है वो हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें अपने खाने पीने का।
0: बिल्कुल सही कहा सुरभि, तुमने ये जो कहा ना कि रात का खाना फकीरों की तरह होना चाहिए, तो कोशिश ये कीजिए कि आप शाम का नाश्ता ही करें जो 5 से 5:30 के बीच में होता है, जिसमें आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, भुने हुए मखाने खा सकते हैं, या अंकुरित दाल ले सकती हैं। इसके साथ ही आपने जैसे बताया कि रात में भी डिहाइड्रेशन हो हमारा, तो उसके लिए भी आप पानी अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि रात को भी प्यास लगती ही है। तो ये तो थी कि बैलेंस डाइट आपका कैसा हो, क्योंकि शरीर बैलेंस रहेगा तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। और तेल आपको इस्तेमाल कौन सा खाने में करते हैं डिपेंड्स कि आपकी खुद की उसमें चॉइस क्या है, चाहे आप सरसों का लें, ऑलिव ऑयल लें, या देसी घी, लेकिन सीमित मात्रा में उसका उपयोग करें, तभी तो हमारी जिंदगी बैलेंस रहेगी बैलेंस डाइट की तरह।
1: भोजन के बारे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जो है वो ताजा और स्वच्छ होना चाहिए। बासी खाना जो है, बचा हुआ खाना जो, वो हमें बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। तले भुने का तथा मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन भी हमें सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। और साथ ही हमें अपने जो रूटीन में नियमित व्यायाम और जो नींद है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तो ये हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। लेकर चलते हैं बहनों को गीत संगीत की दुनिया में, सुनेंगे
0: ये भी एक बैलेंस डाइट है हमारी म्यूजिक की, जो हमें साथ में लेके चल रही है। क्यों सुरभि?
1: बिल्कुल स्वर्ण, सुनेंगे ये प्यारा सा गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: जी हाँ बहनों, जीवन में जैसे गीत संगीत जरूरी होता है, वैसे ही हमारे कार्यक्रम में कुछ एक बातें और भी जरूरी होती हैं जब हम किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं या हम उनसे कुछ भेंट वार्ताएं करते हैं, उनसे बातें पूछते हैं और कुछ विषयों के ऊपर उनसे चर्चाएं होती हैं। ऐसे ही आज हमारे इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय है शिक्षा और मानवाधिकार, और आज की वार्ताकार है श्रीमती आरती जुनेजा। तो लीजिए सुनिएगा ये वार्ता।
8: मानवाधिकार विषय अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में नवीन संविष्टि है जिस पर तुरंत क्रियान्वित की आवश्यकता है। इस विषय या मुद्दे का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ है। इसको स्वीकृति अभी कुछ ही समय पहले ही मिली है, परंतु यह विचार प्राचीन है। इसे पूर्व में प्राकृतिक अधिकार या मनुष्य के अधिकार की संज्ञा दी गई थी। आज प्रचलित शब्द मनुष्य अधिकार है, इसका तात्पर्य मनुष्य के अधिकारों में है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते उन्हें यह अधिकार मिलते हैं। मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को बोलने, विचार करने का, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। यूरोप में 12वीं शताब्दी में अधिकार विषय ने जन्म लिया था। 14वीं शताब्दी के अंत तक प्राकृतिक अधिकार पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। प्राकृतिक अधिकार से तो कई विचारधाराओं ने जन्म लिया। पहली विचारधारा थॉमस हॉब्स की 1588 से 1697 व दूसरी विचारधारा जॉन लॉक 1632 से 1704 विचारों की उपजी। हॉब्स में व्यक्तियों को पूर्व राजनीतिक व्यवस्था में असीमित अधिकार प्रदान किया। सभ्य समाज में प्रविष्ट होते ही उन्होंने इन्हें त्याग दिया। सुरक्षा अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि हॉब्स के प्राकृतिक का सिद्धांत निरपेक्ष सरकारी सत्ता के अनुकूल है, जबकि जॉन लॉक में सामाजिक शक्ति में विश्वास होने के कारण अधिकारों का त्याग का समर्पण कर दिया था। ज्ञात के अनुसार जब सभ्य समाज की रचना होगी तो मानव अधिकार

जन सामान्य के पास रहेंगे। अतः सरकार कभी भी निरपेक्ष सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। प्राकृतिक अधिकारों के सीमित वचनों के परिणाम स्वरूप सीमित सरकार ने जन्म लिया। मनुष्य की जीवन स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार पूर्व रूप से नहीं दिया गया। लॉक के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने समता के अधिकार का आयोग किया एवं व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा व अनुसरण के सरकारी सत्याग की सीमा को नियंत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से ही मानव अधिकारों की उद्घोषणा की जाती है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा में कहा गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र मानव अधिकारों की अनुपालन व सर्वव्यापक रूप में आदर करेंगे। धारा 56 में कहा गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर व अलग अलग इस संगठन में तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में सब संपत्ति से मानव अधिकार पारित किया गया। कुछ देशों ने अपने संविधान में भी मानव अधिकारों को सम्मिलित किया। भारत के संविधान में भी मानव अधिकारों की संज्ञा दी गई है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में मानव अधिकारों को 6 वर्गों में बांटा गया है। जीवन का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वैयक्तिक अधिकार, राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानून व नियम, कार्य, शिक्षा व न्यूनतम जीवन शिक्षा का अधिकार। मानव अधिकार का महत्व। मानव अधिकार विषय में एक समाज सेवी राज्य की कल्पना की गई है। इस विषय में व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा, योग्यता, अधिकारों और स्वतंत्रता व सम्मान को महत्व दिया गया है। मानव अधिकारों की घोषणा में मानव की सर्वोच्च आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया है। विकसित राष्ट्रों के लिए यह मार्गदर्शन का कार्य करता है ताकि वे अपने राज्यों में अल्पसंख्यकों के प्रति सभ्य व्यवहार को प्रोत्साहन दे। इस आणविक युग में हमारा और भावी पीढ़ियों का जीवन और उनके सम्मान को स्थापित करने के लिए मानव अधिकारों का अधिक आवश्यक है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए व उनमें सक्रिय सहभागिता को बनाए रखने के लिए मानव अधिकार विषय आवश्यक है। मानव अधिकार निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में सहायक होंगे। सामाजिक कौशलों का विकास का विभिन्न व्यक्तियों के विचारों में अंतरों की को पहचानना, स्वीकार करना, संघर्षों को अहिंसात्मक तरीकों को दूर करने की योग्यता विकसित करना, समूह में वाद विवाद करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के संबंधित तंत्र का प्रयोग करने के लिए मानव अधिकार महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार शिक्षण के उद्देश्य। मानव अधिकार शिक्षा शिक्षण न विधि संबंधी पुस्तकों को स्मृति में धारण करने से व्यापक है। मानव अधिकार शिक्षा तो संपूर्ण विद्यालय में मिलनी चाहिए। इससे विद्यार्थी को प्रजातंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, शांति, सम्मान व एकता जैसे प्रत्ययों का बोध होता है। यह शिक्षा विद्यार्थियों में कुछ मूलभूत कौशलों का ग्रहण करने में सहायक होगी। मानव अधिकार शिक्षा की विषय वस्तु। विभिन्न देशों के शिक्षण व्यवस्थाओं के विविधता को देखते हुए मानवाधिकार शिक्षा की विषय वस्तु भी अलग अलग हो सकती है, परंतु एक सामान्य विषय की विषय वस्तु विद्यालयों में निम्न होनी चाहिए। मानव अधिकार का प्रत्यय, मानव अधिकारों के प्रकार, कर्तव्य, जिम्मेदारियां, विभिन्न प्रकार के न्याय, असमानताएं व भेदभाव, मानव अधिकारों से जुड़े व्यक्तियों, आंदोलनों व प्रमुख घटनाओं की जानकारी, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सभाओं के घोषणा पत्र व प्रस्ताव, निम्न समस्याओं का ज्ञान व संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, मानव अधिकारों में वर्णित शिक्षा संबंधी प्रावधान, मानव अधिकार में विश्वास, व्यक्तियों की गरिमा न योग्यता, स्त्रियों व पुरुषों को समान अधिकारों को पुनः स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 1 में सुझाव दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र बिना किसी जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के सभी को मूलभूत स्वतंत्रता व मानव अधिकार हेतु प्रोत्साहित करे। अनुच्छेद 2 अध्याय संयुक्त राष्ट्र को सावधान किया गया है कि वह किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं

करे। अनुच्छेद 13, साधारण सभा को अधिकार दिया गया है कि लिंग, भाषा या धर्म में भेदभाव के बिना सभी की मौलिक व मानवीय अधिकार प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान करे। अनुच्छेद 55 में सुझाव दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र बिना किसी जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के बिना सभी मौलिक व मानवीय अधिकारों की पालना व सार्वभौमिक आदर की भावना विकसित करे। अनुच्छेद 76 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि उनमें मानव अधिकारों के प्रति सम्मान तथा सभी को मौलिक अधिकारों के साथ साथ विश्व के लोगों द्वारा आत्मनिर्भरता को पहचाना जाए। बालकों के अधिकार से संबोधित घोषणा। इस घोषणा पत्र में घोषित सभी अधिकारियों को प्रत्येक बालक बिना किसी भेदभाव के उपयोग करेंगे। प्रत्येक बालक की स्वतंत्रता व गरिमा को बनाए रखकर विधि पूर्वक व अन्य तरीकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नोटिस विकास हेतु सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बालक व उसकी माता को विशिष्ट सेवा की व सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। जो बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से विकलांग होंगे, इसे विशिष्ट व्यवहार, शिक्षा तथा देखभाल प्रदान की जाएगी। प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। उसे यह शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क प्रदान की जाएगी तथा यह शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देगी। बालक के हितों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसकी शिक्षा व निर्देशन की जिम्मेदारी सर्वप्रथम उनके माता पिता की है। बालक को खेल व मनोरंजन के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं। समाज व जनसत्ता का प्रयोग बालक को मनोरंजन के अधिकारों को उपयोग करवाने के लिए अधिक प्रयत्नशील हो गए। बालकों को प्रजातिगत, धार्मिक या अन्य भेदभाव उत्पन्न करने वाली दुर्भावनाओं से बचाया जाए। बालकों को समझ, सहिष्णुता, शांति, मित्रता की भावना के अनुरूप वातावरण, अपनी प्रतिभा एवं शक्ति का प्रयोग अपने साथियों को बचाने में कर सके। बालकों की न्यूनतम आयु से पहले किसी भी व्यवसाय में कार्यरत न होने दिया जाए, जिससे उसके स्वास्थ्य या शिक्षा अथवा उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या नैतिक विकास में बाधा आए। मानव अधिकार चेतना का विकास। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के पहले वाक्य में कहा गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना विश्व में स्वतंत्रता, शांति एवं न्याय की आधारशिला है। सन 1968 में तेहरान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन में सभी राष्ट्रों को आग्रह आस्थान करने में निश्चय किया गया है कि वे शिक्षा के सभी साधनों को परिवर्तनशील विश्व में मानवाधिकारों की समस्याओं में रुचि जागृत करने हेतु आयोग में लाएं। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने अपने सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि वे अपने शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा अन्य घोषणाओं को प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रोत्साहित करें। इसमें अध्यापकों से आग्रह किया गया है कि वे संपूर्ण विश्व से सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के सहकारी प्रयासों को विकसित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती भूमिका की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर इन मूल्य एवं अवधारणाओं का किताबों एवं अन्य पाठों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान तथा विधि से संबंधित विभागों को मानवाधिकारों से डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रारंभ करना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार शिक्षा को प्रसारित करने तथा देश को मानव अधिकार चेतना को उन्नत करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। आयोग का यह कार्य मानवाधिकार संरक्षण कानून 12 में उल्लेखित है। इस संवैधानिक दायित्व ने की पूर्ति करने के लिए आयोग के अध्यक्ष में सभी आयामों में मानवाधिकार विषय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्पष्ट स्थान पा सके और मानवाधिकार विषय से संबंधित अनुसंधान तथा प्रकाशनों को प्रोत्साहित किया जाए।

0: वर्तमान में आयोग के अनुरोध का पालन करते हुए दो कानून विश्वविद्यालय दुमका बिहार तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम में स्नातक एवं अधिस्नातक स्तरों पर मानवाधिकारों में पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। भारतीय विधि संघ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब मानव अधिकारों की विधि पाठ्यक्रमों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यह आशा की जाती है कि मानव अधिकारों की चेतना सुस्थापित शैक्षिक संस्थानों से नीचे पिसकर समाज तक पहुंचेगी। इसके उपरांत भी मानव अधिकारों की औपचारिक शिक्षा के अलावा आधारभूत संस्थाओं जैसे परिवार, विद्यालय, कार्य के स्थान आदि में परिवर्तन लाने के लिए मानव अधिकारों की अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता समान रूप से है।
1: जी हाँ बहनों, आप अभी सुन रहे थे वार्ता क्यों सुरभि।
2: बिल्कुल बहनों, अभी हमने सुनी वार्ता जिसका विषय है शिक्षा और मानवाधिकार। वार्ताकार थी श्रीमती आरती जुनेजा। तो बहनों, अब आपको फिर से एक नया संगीत सुनाने का मन हो रहा है जो कि हमारे देश प्रेम से ओतप्रोत है। तो सुनेंगे ये गीत।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो और बच्चे अपना वक्त ना बिताएं अपने दादा दादी नाना नानी के घर पे, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने में कि बच्चों का वो क्वालिटी टाइम है जिसमें उनको बहुत कुछ सिखाना होता है, रिश्तों को मजबूत बनाना होता है। क्यों सुरभि?
3: स्वर्ण, गर्मी की छुट्टियां जो होती है ना, वो बच्चों के लिए आनंद, उत्साह और नई चीजों को सीखने का सुनहरा अवसर होती है। ये समय केवल आराम करने के लिए नहीं होता, बल्कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का भी होता है और अच्छा संबंध भी आपस में बनते हैं। तो बच्चों के साथ यादगार पल बिताना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता यदि इसी समय का सदुपयोग करते हुए चलते हैं तो बच्चे का विकास भी अच्छी तरीके से हो सकता है और वो बेहतर ढंग से बड़े हो सकते हैं, है ना स्वर्ण?
2: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। चाहे उन्हें आप स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कहो कि मोबाइल नहीं यूज करना या किसी भी तरीके का गैजेट नहीं, तो कुछ नई चीजें तो उनको सिखानी पड़ेंगी। तो उसमें कुछ उनकी रचनात्मक गतिविधियां हो जाएंगी, कुछ इंडोर गेम्स हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, दादी नानी की कहानियां।
3: गर्मी की छुट्टियों में साथ में जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी काम को अच्छी तरीके से नहीं जानते, तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी सबसे अच्छा समय होता है। तो इस दौरान बच्चों के साथ बातचीत करने, उनकी रुचियों को समझने और उनकी समस्या को सुनने का अवसर मिलता है। इसमें परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। तो खेल खेलना, पुस्तकें पढ़ना, बागवानी करना, ड्राइंग करना, चित्रकला करना, तो इससे उनमें उनका विकास भी होता रहता है और बच्चों के लिए ये लाभदायक होता है। तो परिवार के सभी लोगों को हम कोई समय निकाल के पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं, दर्शनीय स्थल पे भी घुमाने ले जा सकते हैं। तो ऐसे कई कार्य जो है वो गर्मी की छुट्टियों में किए जा सकते हैं।
2: बिल्कुल, जैसे सुरभि तुमने कहा कि बच्चों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, तो शाम की सैर और खेल दोनों एक ही साथ में हो सकता है। लेकिन चिलचिलाती धूप में शाम के समय बच्चे निकलते नहीं है, तो शाम को साइकिलिंग, इवनिंग जो साइकिलिंग का टाइम होता है वो रख लें, पार्क में बच्चों को टहलाएं, घर के गेम्स भी हो सकते हैं। और हाँ, जहां समर कैंप्स की बात करते हैं तो बच्चों को समर कैंप या वर्कशॉप्स भी इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन बचपन की बातें हैं तो बचपन के दिन तो याद आएंगे ना।
3: बिल्कुल, बच्चों को देखते ही बचपन के दिन याद आने लगते हैं।
2: तुम्हारे बचपन के दिन याद आए?
3: बिल्कुल, और मुझे लगता है इनको भूलना भी नहीं चाहिए।
2: हाँ, बचपन के दिन हमें हमारे उस लोगों से या उस काल से मिलवा लेते हैं जहाँ पे हमने चाहे कुल्फी वाले का इंतजार किया हो, चाहे हम तितलियों के पीछे भागे हो। और ये जो गीत है ये हमें हमारे बचपन की उन सुनहरी यादों में लेकर जा रहा है जहाँ शायद हमारा बचपन ऐसे गुनगुनाता होगा।

0: जी हाँ बहनों, जिंदगी को खुशनुमा रखता है हमारा बचपन और हमारी सेहत को खुशनुमा रखता है हमारा सेल्फ केयर। जब हम वैक्सीन के बारे में जानते हैं और वैक्सीन के बारे में जागरूक होते हैं, क्यों सुरभि? क्योंकि आज जो वैक्सीन है ना HPV, ये वैक्सीन क्यों इतनी जरूरी है, जिसे ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस का टीका कहा जाता है या सर्वाइकल कैंसर का टीका कहा जाता है,
1: इसके बारे में सही जानकारी और जागरूकता फैलाना समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। HPV एक सामान्य वायरस है जो महिलाओं और पुरुषों में दोनों को संक्रमित करता है। इसके कुछ प्रकार जैसे गर्भाशय ग्रीवा, सर्वाइकल कैंसर तथा अन्य प्रकार के कैंसर इसका कारण बन सकते हैं। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण HPV संक्रमण माना जाता है।
0: बिल्कुल सही है, और इसको सही समय पर लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो ये कैंसर से बचाव करता है, दूसरा इसका जो टीकाकरण है सही उम्र में होना चाहिए। 11 से 15 वर्ष के बीच में इस वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाती हैं और 15 वर्ष के बाद टीका लगवाने पर 3 खुराकों की आवश्यकता होती है।
1: इसके साथ साथ चिकित्सक सलाह भी लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही, और जागरूकता का भी अपना महत्व है सुरभि।
1: समय पर टीकाकरण भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अक्सर जानकारी के अभाव में हम लोग संकोच के कारण वैक्सीन के महत्व को नहीं समझ पाते, तो हमें स्वयं जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि गंभीर बीमारियों से किस प्रकार बचा सकते हैं अपने आप को, सर्वाइकल कैंसर से अपने आप में कैसे बचाव किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही, और यदि आपके परिवार या कोई सदस्य इस वैक्सीन को लगवाने के पात्र हैं, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करके खुराक और उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर हमारे मन से जुड़ा है और हमारा मन गीतों के साथ चलता है।

0: जी हाँ, क्योंकि जिंदगी में खुशनुमा रोशनी सी है और रोशनी आती है जब हम खुद को खुशनुमा रखते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। और हल्दी से सुरभि त्वचा का निखार और स्वास्थ्य दोनों ही बेहतरीन होता है। इसका फेस पैक जहाँ हमारे चेहरे को चमकदार बनाता है, दाग धब्बो रहित करता है, वहीं सर्दियों में खाया जाने वाला हल्दी का अचार जोड़ों के दर्द में राहत देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
1: साथ ही हल्दी जो होती है उसको सूखी डिब्बी में हमें रखना चाहिए। इसकी उपयोगिता इतनी अधिक है तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे? तो इसके लिए हमें खुशबू और इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसको बंद में रखना चाहिए। और साथ ही जैसे हमारे बच्चों को पसंद होता है पनीर है, सोया चाप है, ऐसे व्यंजनों को बनाते समय हल्दी डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और दोनों बेहतर भी रहते हैं।

सही, क्योंकि कहते हैं ना एक पंथ और दो काज। जहां ग्लोइंग स्किन के लिए हल्दी है, जहां हल्दी पाउडर का हम फेस पैक बनाते हैं दही और शहद के साथ में, मिनटों में लगाते हैं और झटपट से चेहरा धो लेते हैं, वहीं ये टैनिंग दूर करता है। और जैसे सुरभि ने कहा कि कच्ची हल्दी का जो अचार है उसे हमें डिब्बा पैक रखना चाहिए और उसमें फफूंद नहीं लगे, कुछ और नहीं उसके अंदर कंटामिनेशन हो, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ख्याल एक चीज का और रखना चाहिए, क्योंकि गीत संगीत आपके नूर को और बढ़ा देता है।

0: जी हाँ, कार्यक्रम का समय हो चला है और बार बार की दस्तक हमें जाने पे मजबूर कर रही है। तो इसी के साथ ही आपकी अपनी डॉक्टर स्वरण रेखा
1: सुरभि बोहरा
0: को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: Minister Narendra Modi and other world's leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department, IMD, has forecast favourable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, Interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और

0: उद्यम में जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी

0: मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और

0: सुर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीटर 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें FM चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में कामचोर फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे थे, संगीत राजेश रोशन का था।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का गीत। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रेम पुजारी फिल्म में किशोर कुमार की आवाज़ में गीत। नीरज ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया, योगेश का लिखा, फिल्म आनंद का ये गीत, स्वर मन्ना डे का है।

अपनापन फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए, आनंद बख्शी के लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। इस सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा अस्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास

0: ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओ को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: 395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे।

0: वक्त के साथ सब बदल जाता है, बस कुछ लोग रह जाते हैं इंतजार करते हुए।
1: और शायद यही लाइन आज की शाम को सबसे सही तरीके से बयान करती है।
0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का युवा दिलों की धड़कन युवानी में। और आज की शाम हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि बेहद खास है।
1: और मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त भवानी। दोस्तों, हवा थोड़ी ठंडी है और बातें अपने आप गहरी होने लगती है। शाम अजीब होती है, लेकिन सुबह जितनी तेज होती है उतनी शाम ठंडी होती है।
0: और शायद इसीलिए इस वक्त की सबसे जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं वो उनकी रफ्तार अब जिंदगी में थोड़ी धीमी हो जा रही है। परेशान रहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए।
1: आज पार्क से जब मैं आ रही थी ना अक्षय, तो बच्चे दौड़ रहे थे, युवा फोन में उलझे थे और कुछ बुजुर्ग बस बैठे ही थे।
0: ये चुप्पी जो है आजकल बहुत आम हो गई है प्रियंका।
1: बिल्कुल, पहले ये चुप्पी नहीं होती थी अक्षय। पहले बुजुर्ग कहानियां सुनते थे, सलाह देते थे, डांटते भी थे, और अब तो बस ऑनलाइन दुनिया को देखते हैं, जिसमें शायद उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची।
0: हम इसे आधुनिक युग तो जरूर कहते हैं, डिजिटल युग भी कह देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युग बुजुर्गों के लिए भी इतना दोस्ताना है? अगर ईमानदारी से अगर हम कहेंगे भवानी, तो शायद तुम्हारा जवाब भी नहीं होगा जब तक हम उन्हें साथ ना ले चले।
1: बिल्कुल, देखो अक्षय, टेक्नोलॉजी बुरी बात नहीं है। मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो कॉल, ये सब तो जोड़ने के लिए बने हैं, लेकिन जोड़ तब पाते हैं ना जब कोई समझने वाला भी हो। यही अक्सर हम कहते हैं अक्सर कि अरे इन्हें तो समझ ही नहीं आता, पर सच ये है कि हमें उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उन्हें समझाने की जरूरत भी है।
0: और फिर है ना, हम शिकायत करते हैं कि बुजुर्ग बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अकेलापन यही करता है।
1: बिल्कुल,
0: ये जो वृद्धावस्था है, ये इसका मतलब सिर्फ हमें ये नहीं है कि हम इनकी शुगर का ध्यान रख ले, इनकी बीपी का ध्यान रख ले, इनके खान पान का ध्यान रख ले।
1: बिल्कुल, स्वस्थ वृद्धावस्था का मतलब दोस्तों ये है कि मन का ठीक रहना। अगर उनका मन ठीक रहेगा, जब कोई पूछने वाला होगा कि दादाजी या दादी जी आज आपका दिन कैसा गया, तो डिजिटल जो युग में ये सवाल अक्सर एक मैसेज बनकर रह गया है।
0: और कई बुजुर्गों के लिए तो वो मैसेज भी पढ़ पाना आसान नहीं होता है कि हम उनसे पूछ पा रहे हैं या नहीं पूछ पा रहे हैं।
1: और यहीं से शुरू होती है अक्षय दूरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भवानी इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है।
1: और वो क्या है?
0: मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं जो कि सुबह होते ही शुभकामनाएं भेजते हैं, वीडियो कॉल पे अपने पोते पोतियों से और नातियों से बातें करते हैं, और यकीन मानो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है।
1: क्योंकि अक्षय उन्हें लगता है कि मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूं। हाँ। तो असली सवाल ये नहीं कि डिजिटल युग अच्छा है या बुरा, असली सवाल ये है कि हमने बुजुर्गों को इसमें शामिल किया है या नहीं किया है।
0: बिल्कुल, स्वस्थ वृद्धावस्था वो होगी जिसमें हम आज उन्हें सीखने में जोड़े, और सीखने का मतलब चाहे वो नया मोबाइल सीख रहा हो।

0: चाहे कोई नई आदत हो या कोई नई सोच हो, हम उन्हें जोड़े। और हमें यह मानना होगा कि उम्र सीखने में रुकावट नहीं होती, वो उम्र सिर्फ एक नंबर होता है। रुकावट तब बन जाती है जब हम ये सोच लेते हैं कि अब इनके बस का नहीं है।
1: कई बार बुजुर्ग अकेले नहीं होते, उन्हें अकेला छोड़ा जाता है और फिर हम कहते हैं कि वो तो पुराने जमाने के हैं। पर वही पुराने जमाने वाले आज भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जैसे धैर्य, संतुलन और अपनी जिंदगी में ठहराव। उन्हें ये एहसास दिलाना है कि उनकी जरूरत हमें अभी भी है।
0: बिल्कुल है, और क्यों नहीं है। डिजिटल युग में स्वस्थ वृद्धावस्था का मतलब यही है। उन्हें सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं, उन्हें सम्मान की भी जरूरत है। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि उनकी जरूरत हमें है, थी और रहेगी। कभी उनसे राय लेना, कभी बस उनके साथ बैठ जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ज्यादा असरदार चीज आज भी इंसानी साथ है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब बुजुर्ग स्वस्थ होते हैं ना दोस्तों, तो शरीर से ज्यादा मन से स्वस्थ होते हैं, तब समाज भी आगे बढ़ता है दोस्तों।
0: क्योंकि जब बुजुर्ग स्वस्थ होगा तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा तो आपका सारा परिवार साथ मिलकर के, आपकी फैमिली साथ मिलकर के राजी खुशी बड़ुम्बा करेंगे। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये बड़ुम्बा क्या है? तो आओ सुनते हैं इस गीत के जरिए।

0: कैसे हुआ दिमाग जुम्बा जुम्बा? आपके दिमाग को और जुम्बा जुम्बा करने के लिए हम लेके आए हैं आपके कुछ सेगमेंट में ऐसे ही तड़ाकेदार क्वेश्चन। तो आपके कुछ सेगमेंट के दो क्वेश्चन में से पहला प्रश्न है,
1: हाल ही में कौन सा आठवीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है,
0: किस राज्य सरकार ने भारत की पहली समर्पित डीप टैंक नीति लॉन्च की है? साथियों, इनके सही उत्तर आप भी सोचिए, क्योंकि आपका दिमाग में इसमें जुम्बा जुम्बा करेगा और सही उत्तर जो है हम भी आपको मिलान करवाएंगे कार्यक्रम में अंत में, और देखेंगे आप कितने सटीक पहुंच पाए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

है तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अक्षय, तुम्हें पता है कि आज क्या है?
6: आज क्या है? आज 14 जून है और संडे है।
5: बस तुम्हें बस यहाँ तक ही पता है कि आज संडे है। आज है विश्व रक्तदान दिवस।
6: हाँ, वो भी है।
5: तुम बार बार भूलो नहीं, इसीलिए आज हम सुनेंगे दोस्तों एक वार्ता जिनकी वार्ताकार है रिया गर्ग। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं।
7: रक्त मानव शरीर का एक तरल पदार्थ है जो शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व और प्राणवायु पहुंचाने का कार्य करता है और कोशिकाओं से खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त की कमी के कारण देश भर में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल लगभग 4 करोड़ यूनिट खून की आवश्यकता होती है, पर मुश्किल से 40 से 50 लाख यूनिट ही रक्तदान द्वारा एकत्रित हो पाता है। हर 2 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है और ऐसे में हर दिन 38,000 रक्तदाताओं की जरूरत होती है। लेकिन रक्तदान को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों और जागरूकता के अभाव में लोग रक्तदान के लिए आगे नहीं आते हैं। रक्तदान करें, जीवन दान करें। प्रत्येक रक्तदान जीवन का उपहार है। रक्तदान कर किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है और रक्त आदान के लिए इसका उपयोग होता है। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1997 से 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस मुहिम के पीछे मकसद विश्व भर में रक्तदान की अहमियत को समझाना था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही इस मुहिम को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है जितना कि अपेक्षित है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों में फैली भ्रांतियां हैं, जैसे कि रक्तदान से शरीर कमजोर हो जाता है और उक्त रक्त की भरपाई में काफी समय लग जाता है। इतना ही नहीं, गलतफहमी यह भी है कि नियमित रक्तदान करने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि बीमारियां जल्दी होती है। ऐसी मानसिकता के कारण ही रक्तदान लोगों के लिए हवा बनकर रह गया है, जिसका नाम सुनकर ही लोग सिरह उठते हैं। ऐसी ही भ्रांतियों को दूर करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस

आयोजन की नींव रखी ताकि लोग रक्तदान के महत्व को समझकर जरूरतमंदों की सहायता करें। जैसे कि अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें निश्चित अवधि के बाद खून बदलवाने की आवश्यकता पड़ती है। यह अवधि मरीज की आयु पर आधारित होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है यह अवधि कम होती जाती है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थैलेसीमिया ग्रसित रोगियों तथा इसी प्रकार अन्य रोगियों और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को रक्त की कितनी आवश्यकता पड़ती है। आपके द्वारा दान किया गया रक्त अमूल्य है जो कि किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। रक्त जीवन का रक्षक है। अब तक ऐसी किसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है जो कृत्रिम रक्त तैयार कर सके। किसी रक्तदाता द्वारा रक्तदान करने पर ही रक्त की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। हर साल करोड़ों लोगों को रक्त की जरूरत होती है जिसमें से कुछ लाख लोगों को ही रक्त मिल पाता है। एक बार रक्तदान कर आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आप 18 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक हर 90 दिन बाद रक्तदान करते हैं तो लगभग 30 गैलन रक्तदान कर चुके होंगे जो कि लगभग 500 लोगों की जान बचा सकता है। भारत में सिर्फ 7% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किसी भी ब्लड ग्रुप के लोगों को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त ही सबसे सुरक्षित होता है। गर्भवती महिलाओं एवं अन्य गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को रक्तदान के माध्यम से नवजीवन दिया जा सकता है। विशेषज्ञों की राय में 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ हो और जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5% से अधिक हो 3 माह के अंतराल पे रक्तदान कर सकता है। विश्व रक्तदान दिवस के दिन विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजन और गोष्ठियां तथा रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। कुछ सामाजिक संगठन स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी करते हैं। रक्तदान करके आप अन्य लोगों को ही जीवनदान नहीं दे सकते बल्कि इसके आप स्वयं के लिए भी कई फायदे हैं, जैसे कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक और कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी घटती है। रक्तदान करने से लगभग 650 कैलोरी खर्च हो जाती है। रक्तदान करने वाले लोगों में हृदय रोग की आशंका 33% तक कम हो जाती है। रक्तदान करने से शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया में तेजी आती है। रक्तदान से शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता और ना ही किसी प्रकार की हानि होती है। एक औसत व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट रक्त मौजूद होता है। रक्तदान के समय सिर्फ 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान की प्रक्रिया काफी सरल है और इसमें डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। रक्तदान की प्रक्रिया में सबसे पहले रक्तदाता का रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें नाम, उम्र, पता इत्यादि जानकारी ली जाती है। रक्तदाता का मिनी फिजिकल परीक्षण किया जाता है जिसमें रक्तदाब, पल्स रेट, वजन, तापमान के बाद ब्लड ग्रुप तथा हीमोग्लोबिन लेवल की जांच की जाती है। रक्तदान करने के योग्य पाए जाने पर रक्तदाता को रक्तदान कक्ष में टेबल पर लिटाया जाता है तथा हाथ में एक निर्जंतक सुई द्वारा 1 यूनिट खून 10 से 15 मिनट में लिया जाता है। रक्तदान के बाद एक बार फिर से रक्तदाता का रक्तदाब और पल्स रेट का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद रक्तदाता को उसकी रुचि के अनुसार फल तथा जूस इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी या हानि नहीं होती है। इसके पश्चात रक्तदाता को ब्लड ग्रुप कार्ड और रक्तदान प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। दिए जाने वाले रक्त की मात्रा और तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक आदर्श रक्तदान लगभग 450 मिलीलीटर का होता है। रक्तदान करके आप किसी को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। सिर्फ एक जिंदगी नहीं उससे जुड़ी कई अन्य जिंदगियों की भी मदद करते हैं। इस प्रकार रक्तदान कर हम कई जिंदगियां बचाने का पुण्य काम भी करने का मौका मिलता है। मानव शरीर दिए गए रक्त की पूर्ति 24 घंटे में और कोशिकीय भाग की पूर्ति लगभग 1 से 2 माह के अंदर ही पूरी कर लेता है। इससे शरीर की कार्य क्षमता और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन कार्य में लगे हुए हैं, परंतु जिस स्तर पर रक्तदान के लिए जागरूकता लाई जानी चाहिए उस स्तर पर

0: मैंने कई सफल लोगों को भी देखा है कि अपनी मातृभाषा के अंदर भी वह बहुत आत्मविश्वास के साथ बात कर लेते हैं और लोग उनकी बात भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी बात में सच्चाई होती है, स्पष्टता होती है। कई बार हम डर जाते हैं कि कहीं गलत ना कह दे या कहीं कोई गलती से हम पे हंस ना ले, लेकिन एक बात कॉमन है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, और जब वो गिरता है तब भी वो चलना सीखता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ। और हमारे तो मैं मेरी फैमिली का बताता हूँ, हम जब बाइक और सीखते हैं तो पूछते हैं तू गिरा क्या। मैं सोचता था गिरने का क्यों पूछ रहे, उल्टी माला फेर रहे। तो समझा जब कोई गिरेगा ना तब वो सीखेगा, और ये सत्य भी है।
1: और दोस्तों एक बात और है कि मोबाइल पर घंटों समय बिताने से बेहतर है कि घर के लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कीजिए। आजकल एक ही कमरे में बैठे लोग भी मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, जबकि बातचीत से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोगों को समझने की क्षमता बढ़ती है। मुझे लगता है अक्षय कि आज हर फील्ड में यह गुण जरूरी हो गया है, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, बैंक कर्मचारी हो या अपना कोई छोटा व्यवसाय करने वाला हो।
0: सच में, क्योंकि जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंट में फील करेंगे, और जो लोगों से जुड़ना सीख जाता है ना उसके लिए अवसरों के जो दरवाजे वो खुद ब खुद खुल जाते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़े अच्छे वक्ताओं को सुनिए, और परिवार और दोस्तों में खुल करके बातचीत कीजिए, और सबसे जरूरी बात खुद पर भरोसा करना सीखिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि आत्मविश्वास से कही गई साधारण बात भी लोगों पर असर छोड़ जाती है। आज की बातचीत से हमें ये बहुत ही स्पष्ट हुआ है, क्यों अक्षय?
0: बिल्कुल, और मैं एक कॉमन सा उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ कि जैसे यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपकी बातचीत अच्छी नहीं है, आप अच्छे से अपने बातों को रख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो आप एक गौर करना कि आपको कई सारी शिकायतें सुनने को मिलेगी, कई सारी आप में कमियाँ निकल जाएगी। और कुछ कमियाँ जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर से प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपनी समय का सही उपयोग नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपको ये एक शिकायत तो कॉमन सुनने को मिलेगी।
1: कौन सी?
0: तुम्हें नहीं पता है? ये तो कॉमन है। चलो गीत के जरिए सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। बनाना

0: अरे अक्षय, आज जब मैंने तुम्हें देखा था कि तुम पार्क में टहलने गए थे।
1: हाँ, वहाँ फिर आज बड़ी ताजगी का मौसम था। देखो, कॉमन बात है सुबह के मौसम में, और भाई कल परसों 2 दिन से ठंडक मिल रही थी तो अपने आप मन हो ही जाता है।
0: ताजगी तो है, लेकिन एक बात देखकर मैं सोच में पड़ गई।
1: वो क्या?
0: वहां कुछ बच्चे दौड़ लगा रहे थे, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई फुटबॉल खेल रहा था, और कुछ बच्चे लंबी कूद का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई।
1: सच में ये तो बात तुम्हारी सही है। बचपन में हम जब गेम खेलते थे तो एक मज़ा लेता था। गेम एक खुशी का मौका था, तो उसको हार जीत की कोई चिंता नहीं होती थी, और एक मस्ती के लिए उस समय न कोई हार की चिंता, न कोई जीत का घमंड।
0: बिल्कुल, बस खेलना होता था और खूब खेलना होता था। वैसे खेलों की बात निकली है तो मुझे याद है कि दुनिया में एक ऐसा आयोजन भी होता है जहां दुनिया के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं।
1: अरे हाँ, और जब वहाँ जो आयोजन होता है तो पूरा संसार खिलाड़ियों की ओर देखने लगता है, और करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल के सामने बैठे होते हैं, और एकदम सांस थमी हुई समान होती है उनकी, और
0: बिल्कुल
1: अपने देश के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक खेल की। जब भारत का कोई खिलाड़ी आता था ना, या वो पदक जीतता था ना अक्षय, तो कितनी खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरे देश ने जीत हासिल कर ली है। और जब वो राष्ट्रगान बजता था ना अक्षय, तो सच में प्राउड मोमेंट था वो हमारे लिए। यही तो खेल कूद की खूबसूरती है। खेल से प्रतियोगिता नहीं होती दोस्तों, लोगों को जोड़ने का भी काम करती है।
1: सच में दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव भी इसी भावना की ओर आगे बढ़ाता है,
0: बिल्कुल,
1: और वो ओलंपिक है।
0: बिल्कुल,
1: कई श्रोता सोच रहे होंगे कि आखिर यह आयोजन इतना खास क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं और अपने अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, और पूरी उनकी कोशिश भी रहती है कि हम विजय ही हासिल करें। यह केवल एक पदक जीतने की बात नहीं होती है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और खेल भावना का भी उत्साह होता है।
0: और इसकी सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग देशों के लोग एक मंच पर आते हैं। भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन खेल सबको जोड़ देता है। मुझे याद है कि एक बार मेरे छोटे भाई ने पूछा था कि ओलंपिक में इतने सारे खेल क्यों होते हैं।
1: फिर तुमने क्या कहा?
0: मैंने कहा कि भाई, अगर सिर्फ एक ही खेल हो तो बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, जवाब दिया तुमने।
0: तो फिर उसने कहा कि फिर वीडियो गेम भी तो शामिल होना चाहिए ना। आजकल के बच्चों की सोच भी कमाल है। वैसे ये परंपरा कोई नई नहीं है।
1: जी हाँ, इसकी शुरुआत भी पूरा

0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। कल फिर ऐसी ही मस्ती मजाक और बहुत ही रोचक जानकारियों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक मैं भवानी
1: और मैं अक्षय आचार्य
0: आपसे लेते हैं अलविदा।
1: नमस्कार।

युवा श्रोताओं ने अभी अपना कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम का नाम था युववाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सात बजे हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी वीमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। आज फिल्म संगीत में एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुमार सानू के गाए हुए कुछ फिल्मी नगमे। समय है संध्या 6:05।

0: श्रोताओं एक बार फिर से याद दिलाएं, आज संध्या 7 बजे सुनिएगा आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। और ये T20 वर्ल्ड कप जो है का ये मैच एजबेस्टन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला जा रहा है, और हम आपको इस मैच की लाइव कमेंट्री सुनवाएंगे संध्या 7 बजे से खेल की समाप्ति तक। ये तो था हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। संध्या के 6 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति

0: इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: रीडिंग 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं कुमार सानू। श्रोताओं, कुमार सानू की जीवन यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियों और उनके

बेहतरीन गीतों के बारे में आप सब जानते हैं। ये वे गीत हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई है। 90 के दशक की मोहब्बत भरी आवाज, रोमांटिक गीतों के बेताज बादशाह और करोड़ों संगीत प्रेमियों के चहेते गायक कुमार सानू को। आइए शुरू करते हैं सुरों और यादों से भरे इस खूबसूरत सफर को इस खूबसूरत नगमे के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोतो, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि कुमार सानू का वास्तविक नाम क्या है? हाँ, मुझे पता है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिस कलाकार को हम प्रेम करते हैं उसके बारे में जानने की इच्छा सबकी होती है। इंटरनेट के इस जमाने में जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुमार सानू का वास्तविक नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है, तो ये औपचारिकता मात्र हो सकती है, लेकिन उनके पिता का नाम पशुपति भट्टाचार्य, जो कि एक संगीतकार और गायक थे, बचपन से ही संगीत का माहौल मिलने के कारण कुमार सानू का झुकाव भी संगीत की ओर हो गया। शुरुआती दिनों में ये यानी केदारनाथ भट्टाचार्य किशोर कुमार के गीत गाकर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। संघर्ष के दिनों में कोलकाता के छोटे बड़े मंच उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का मौका देने के साक्षी बने, और फिर उन्होंने रुख किया सपनों की नगरी मुंबई का। फिल्म का नाम था आशिकी, 1990 में आई थी। संगीत जगत में इतिहास रच दिया, कुमार सानू को नई पहचान दिला दी। इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि उस दौर में थे। उसके बाद आशिकी 2 भी आ गई, लेकिन आप तुलना करके देख सकते हैं कि कौन ज्यादा कर्णप्रिय संगीत वाली फिल्म थी। एक दिन में 28 गीत रिकॉर्ड करने का विश्व रिकॉर्ड भी कुमार सानू के नाम पर है, और लगातार 5 सालों तक सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले गायक कुमार सानू थे। हिंदी के अलावा बांग्ला, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, नेपाली, असमिया और कई और भाषाओं में भी वो गीत गा चुके हैं। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, और 90 के दशक में शायद ही कोई बड़ा अभिनेता रहा हो जिसके लिए कुमार सानू ने अपने आवाज ना दी हो। आइए सुनते हैं इसी आवाज में एक और अमर गीत।

श्रोतो, मेरे आवाज के नेपथ्य में यानी बैकग्राउंड में आपको ये गीत सुनाई देता रहेगा और मैं भी आपके साथ बातें करता रहूंगा। कुमार सानू का सुनहरा दौर 1990 से 2000 के बीच में रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी उनके गीत लोग सुन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, राजेश रोशन जैसे महान संगीतकारों के साथ मिलकर बहुत सारे सुपरहिट गीत दिए। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास है जिसकी वजह से रोमांटिक गीतों को वो एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। यही कारण है कि आज भी उनके गीत नई पीढ़ी के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। अपने कैरियर में हजारों गीत रिकॉर्ड करने वाले कुमार सानू ने भारतीय फिल्म संगीत को कई ऐसे गीत दिए जो आज भी सदाबहार माने जाते हैं। श्रोताओ, आपको कुमार सानू की आवाज में कौन सी भावनाओं के गीत सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? प्रेम के गीत, विरह के गीत, खुशी के गीत या भावनाओं के किसी दूसरे रंग के गीत? कोई भी रंग ले लीजिए, हर रंग को उन्होंने बखूबी प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि उन्हें 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय आवाज कहा जाता है।

अब ये गीत कोई देखिए, जुर्म फिल्म का ये गीत जो है, आप कभी भी सुन लीजिए, आपको लगेगा कि अभी अभी रिकॉर्ड हुआ है, बिल्कुल ताजा ताजा गीत है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा।

0: श्रोताओ, समय का अभाव है यानी समय की अपनी सीमा है। गीत हमने लेट शुरू किया, नहीं तो आपको पूरा सुनवाते। चुरा के दिल मेरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कुमार सानू के साथ ही एक आवाज और भी है, लेकिन फिलहाल इस एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंक को समेटने की अनुमति दे दीजिए अशोक प्रेम को। नमस्कार, हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी, और उसके बाद यानी 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम

मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर भी श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 12 साल के विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर चल रही प्रदर्शनी का आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अवलोकन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
2: देखो, जो मिलावट, गड़बड़, घोटाला रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी। कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत आज बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
3: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।

आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से

इंडिया का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों की पोस्टिंग का अधिकार दिया है। 12 जून से शुरू हुए इन शिविरों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में नॉन फील्ड में कार्यरत तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों को तहसीलों या उप तहसीलों के खाली पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित किए जाने की जिला कलेक्टर की शक्तियां भी शिविर प्रभारियों को दी गई हैं। खातेदारों की भूमि से संबंधित मामले और अभिलेखों में गलतियों को ठीक करने के प्रकरण से संबंधित शक्तियां भी प्रभारियों को सौंपी गई हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी भूमि बंटवारे और पंचायतों के सीमा ज्ञान की शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं। सरकार ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन की उद्घोषणा की समय अवधि भी घटाकर 7 दिन कर दी है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है उनमें अब सर्वे, सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के 4 साल बाद नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादक काफी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 महीने की एक मुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से नमक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पाली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उद्घाटन किया। इस सेंटर में बुजुर्गों को उनके समय के सदुपयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों के जरिए व्यस्त रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है।

0: सलुम्बर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक करने के लिए कार्यशाला रखी गई। जावर माइंस के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यशाला में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करने और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के साथ ही शेखावटी क्षेत्र के जिलों में आज कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना रहा। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और कई जगह बारिश हुई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इधर मौसम के सुहावना बने रहने से गर्मियों की छुट्टियों में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवक दर्ज की गई है। पर्वतीय पर्यटक स्थल आबूराज में इन दिनों राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित

0: माउंट आबू पहुंच रही है और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर टोंक जिला नवाबों की विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित ये जिला राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर स्थित बीसलपुर बांध राज्य में पेयजल का एक बड़ा स्रोत है। टोंक जिले की चिट्ठी में आज हम बात करेंगे पिछले महीने टोंक में हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में। ऊर्जा और टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री नागर ने देवली में दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी। स्कूटी मिलने पर दिव्यांग जन के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम में कुल 59 स्कूटियों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्कूटी मिलने से दिव्यांग जन का जीवन सुगम होगा, उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आम जन को जागरूक करने का कार्य किया गया ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मालपुरा के नगर वन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गंगा दशहरा से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न हुआ। इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। जलदाय मंत्री ने नगर वन में पौधरोपण कर अधिकाधिक पेड़ लगाने और विकसित होने तक उनकी देखभाल करने का आह्वान किया और कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश भी दिया। इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। श्री चौधरी ने पेड़ों पर परिंडे भी बांधे ताकि पक्षियों को गर्मी में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जल, मिट्टी, शुद्ध हवा, भोजन उपलब्ध कराती है, इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति को संरक्षित रखें। श्री चौधरी ने बीते दिनों मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुरा गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव उनके सामने रखे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भीषण गर्मी के मद्देनजर पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर जोर देने को कहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम

0: खानका सहित अन्य आला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महत्व के काम में सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले स्वगणना का दौर चला, लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भरी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों में योग अभ्यास का सिलसिला चल रहा है। इन कार्यक्रमों में नियमित योग अभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। अधिक मास के चलते इन दिनों जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं। वहीं ईद उल अजहा का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर कुर्बानी की रस्म अदा कर दावतों के दौर भी चले। टोंक जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास, साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण मत है आधारित बतायो। केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रिया शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों री समस्यावा रो मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिला रेसा के कई थोड़ा माथे आंधी और बारिश। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज नींस माए भारत इनोवेट्स कार्यक्रम रो भेला तौरू उद्घाटन करियो। भारत फ्रांस नवाचार बरस माए राख्या इन कार्यक्रम माए दूजा देशा रा शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी भेला विया। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस रा मजबूत संबंधा रो जिक्र करियो। वणा कया के नवाचार प्रौद्योगिकी और भारत रा नौजवाना री आकांक्षावां देश रा विकास ने गति और भविष्य ने आकार दे रही है।
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत रे बारे इन विशेष पहल री मेजबानी ने फ्रांस खातर सम्मान रो विषय बतायो। वणा कया के दुनिया भारत ने अपार प्रतिभावां सु संपन्न नवाचार और प्रौद्योगिकी रा हलका माए एक क्रांतिकारी शक्ति रा रूप माए देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रों आजादी रे पछे भारत रा समूह लंबा टेम तय निर्वाचित प्रधानमंत्री बनबा माथे भी श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। दोनों नेतावां रे बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ावा मात है चर्चा चल रही है जिनमाए रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार भेड़ो है। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकारा 12 बरस पूरा हो बारे मौके आदिना राज्य भर माए जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां चल रही है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय माथे राखी प्रदर्शनी माए सरकारी उपलब्धियां और जनकल्याणकारी योजनाओं रो प्रचार प्रसार करियो जारी है। सिरोही जिला मुख्यालय माथे चल रही प्रदर्शनी रो आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जायजो लीनो। इन दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रिया। अलवर जिला मुख्यालय माथे लगाई जी प्रदर्शनी रो

0: प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जायजोलिनो इन मौके प्रभारी मंत्री कया के राज्य सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे चालता किणी दोषी ने बख्शियो नी जावेला खबर नवी सौ बातचीत में वणा कयो के कास्तकारा ने नकली खाद बीज बेच पावाला माथे कड़ी कार्यवाही जारी रहवेला
1: देखो जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीट पेपर में सब इंस्पेक्टर में आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीट पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी। कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: इन कड़ी माए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन रे तहत आज बीकानेर माए भाजपा कानून प्रबुद्ध जन सम्मेलन राखियो गयो। सम्मेलन माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लारला 12 बरस माए भारत विकास सुशासन राष्ट्रीय सुरक्षा सामाजिक न्याय और जन कल्याण हलका माए घनी तरक्की करी है। वे कया के मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास राम मंत्र रे सागे काम करियो है।
2: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
0: आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब माथे राख्या एक लाइव योग सत्र रे मार्फत नयो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो। इन ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,072 लोग भाग लेना। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कया के ओ उपलब्धि दुनिया भर में योग री बढ़ती लोकप्रियता ने दर्शावे है। बना लोगों योग ने आपरा रोजमर्रा रा जीवन रो हिस्सो बना बारी अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो खास कार्यक्रम 21 जून ने कोल कातामाए वेला। ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। राज्य सरकार प्रदेश माए राख्या जा रिया ग्रामीण सेवा शिविरा माए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारारी पोस्टिंग रो अधिकार दियो है। 12 जून सु स्वरूपिया इन शिविरा ने असरदार और चौकी तरीका करबा खातर राजस्व महकमो प्रशासनिक शक्तियां बांट दिनो है। जनता सो जुड़िया कामा ने टेम माथे पूरो करबा और योजनावारो फायदो हरेक जना ताई पुगाबा खातर सरकार यो कदम उठायो है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर आपरा अधिकार खेतर माए नॉन फील्ड माए काम कर रिया तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने तहसीला या उप तहसीला माए खाली पद माथे नियुक्ति कर सकेला। इनरे इतर भू राजस्व अधिनियम रे तहत आबादी विस्तार खातर जमी आरक्षित करिया जाबारी जिला कलेक्टर आरी शक्तियां भी शिविर प्रभारिया ने दी गई है। खातेदारारा जमी सु जुड़िया मामला और अभिलेखा माए गलतियां ने ठीक करवारा प्रकरण सु जुड़ी शक्तियां भी प्रभारिया ने सौंपी गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने भी भूमि बंटवारा और पंचायतारा सीमा ज्ञान दी शक्तियां भी हस्तांतरित करी गई है। सरकार भूमि आवंटन खातर आवेदन री उद्घोषणा री मियाद भी घटार 7 दिन कर दी है। राज्य माए नमक उत्पादन ने बढ़ावो देबा खातर नियमा माए फेर बदल करियो गयो है। नया नियमा रे मुजब अबे नमक उद्योग खातर भूखंड आवेदन ई ऑक्शन रे मार्फत करिया जावेला। पहली आ प्रक्रिया लॉटरी आधारित ही जिन जिला माए नमक उत्पादन खातर लवणीय भूमि मुहैया है उन माए अबे सर्वे सीमांकन और भूखंडारा मापन रे पछे ही आवंटन री कार्यवाही करी जावेला। पहली रा नियमा माए लीज खत्म हो बारे 4 बरस रे पछे नवीनीकरण कर बारो कोई प्रावधान नी हो बासू राज्य री करीब 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण नी हो जिन वजह सु नमक उत्पादन घना परेशान हा। राज्य सरकार कानियो इन भातरी इकाइयां ने 6 महीना री एक मुश्त छूट देर नमक उत्पादका ने राहत दी गई है। सरकार इन फैसलाओ नमक हल्का माए निवेश बढ़ेला और रोजगार रा नया मौका वेला। पाली माए वरिष्ठ नागरिका खातर बनाया गया डे केयर सेंटर आरो आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उद्घाटन किया। इन सेंटर माए बुजुर्गों खातर कई गतिविधियां चलाई जा रही है। इन मौके श्री गहलोत किया कि राज्य सरकार ठावा नागरिका रा कल्याण खातर समर्पित है। सलुम्बर माए कास्तकारा ने जैविक और

0: करते खेतीरी कानियों जागरूक करबा खातर कार्यशाला राखी गई जावर माइंसरा सामुदायिक भवन में राखी जी इन कार्यशाला में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी भाग लेना इन मौके कास्कारा ने रासायनिक खाद रे बिना खेती और नवाचार करबाने प्रेरित करियो गयो। प्रदेश में प्री मानसून रो सिलसिलो तेज बह रियो है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर उलारला 24 घंटा माए राज्य पूर्वी और पश्चिमी हल्का माए कुछ एक थोड़ा माते बादल गरज बारे साके कटे कटे छितरायो में बरसियो। राज्य रा पूर्वी और उत्तरी हल्का रे सागई शेखावाटी के तरह जिला माए कई थोड़ा माते आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे मौसम पलट बसु कई थोड़ा माते हल्को में बरस बसु दिन और रात रात तापमान माए गिरावट आई है। मौसम महकमो आज प्रदेश रा 9 जिला खातर ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। वठीने जैसलमेर अलावा सगला जिला में येलो अलर्ट ऐलान करियो गयो है। अठीने मौसम सुहावनो वेवासु गर्मियारी छुट्टियां रे चालता प्रदेश री सैर सपाटारी थोड़ा माथे रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में लाला कुछ एक दिनाओ घरेलू सैलानियारी तादाद बढ़ी है। पर्वतीय पर्यटन थौर आबूराज माए आदिना राजस्थान रे सागे ही पड़ोसी राज्य गुजरात भी बड़ी संख्या में सैलानी पुगरिया है। बत्ती जानकारी महाका सिरोही खबर नबीसु।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत आपरा पहला मैच में पाकिस्तान रे सागे खेलेला। ग्रुप एरो ओ बकिंगम में एज वेस्टर्न में भारतीय टीम रे मुजब सिंजा 7 बजे शुरू वेला। महिला टीम 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचा में भारत हाल ताई पाकिस्तान ने 16 मई सू 13 मुकाबला में हरा चुकियो है। विश्व रक्तदाता दिवस माथे आज प्रदेश भर में एक विधि राखी गई। सुरक्षित रक्तदान रा महत्व रा बारा में जागरूकता लियाबा और स्वैच्छिक रक्तदान खातर प्रेरित कर बारा लगसु न्यारा न्यारा संगठना और संस्थानारी कानियों कार्यक्रम राखिया गया। अजमेरा जवाहरलाल नेहरू सफाखाना में सम्मान समारोह राख्यो गयो। रक्तदाता जीवनदान विषय माथे वक्ता आपरा विचार राख्या। भीलवाड़ा में रेडक्रॉस सोसायटी री कानियों राख्या कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू रक्तदाता वारो सम्मान करियो। और अब है आखिर माए खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनी रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर में लोगारी समस्या मौका माते समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज पूर्वी और उत्तरी जिला रे सागे कई थोड़ा माते आंधी और बारिश। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे पूरो भी माँ को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: They won the toss and Ashish, let me tell our listeners that India had lost 8 consecutive tosses before this match in T20Is and therefore things have started off on the right note. Of course, they say well begun is half done and we are hoping that our openers get us off to a good start. Smriti Mandhana and Shefali Verma out there in the middle and we can spot Pakistan's wicketkeeper Muniba Ali. She is standing up to the stumps which means that she doesn't want the batter to step out and alter the length of the bowler. That is what Pakistan are looking at. In fact, it looks like they're going

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक

0: भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा। कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात

0: करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 100

0: सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।